उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: नान।
1: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज मंगल है रबीउसानी की 2 और सितंबर की 15 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी रिलीफ स्कीम के तहत ईंधन की खरीदारी पर दी जाने वाली माली आनत के हुसूल से मुतालिक ज़राए इब्लाग में वसी पैमाने पर आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत की है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इआदा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तजारत को मुतनव्व बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। जम्हूरियत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। गजा और लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 15 अफराद शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की टीमों के दरमियान चौथा एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल इंग्लैंड के वेम्बले पार्क में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी रिलीफ स्कीम के तहत ईंधन की फराहमी पर माली आनत के हुसूल के लिए रजिस्ट्रेशन और दीगर ज़रूरी तरीक़ाकार से आवाम को आगाह किया जाए। वो इस्लामाबाद में मोटरसाइकिलों, रिक्शों और 800 सीसी गाड़ियों के लिए स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि माली आनत के हुसूल की रजिस्ट्रेशन के लिए दरकार SMS मुफ्त किया जाए। ईंधन सब्सिडी स्कीम गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के रहायशियों के लिए शुरू की गई, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर के लोग कल और परसों की दरमियानी रात से इस सहूलत से इस्तफादा कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में मुंतखब नुमाइंदों और रज़ाकारों को मुतहर्रिक करने पर जोर दिया ताकि शहरियों को रजिस्ट्रेशन और दीगर ज़रूरी तरीक़ाकार में मामनत फराहम की जा सके। उन्होंने हुकाम को ज़रा इब्लाग के ज़रिए वसी पैमाने पर आगाही मुहिम शुरू करने की भी हिदायत की। इजलास में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 4 बुनियादी मालूमात दरकार हैं, जिसमें कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन का सूबा और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की तारीख शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और लबनान के दरमियान खुसूसन दाखिली सलामती कानून के नफाज और मनशियात की रोकथाम के शोबों में ताबुन को मजीद मुस्तकम बनाने पर जोर दिया। वो लबनान के वजीर दाखिला और बल्दियात अहमद अहजार से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर ने लबनान और वसी तर मशरक़ वस्ता में जारी अदम इस्तेहकाम और कशीदगी और इंसानी और जिंदगी और सलामती पर उसके असरात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने लबनान के खुद मुख्तारी, आज़ादी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इरादा किया है। वो लबनान के वजीर दाखिला और बल्दियात अहमद अल हज्जार से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान के खिलाफ इसराइली जहरीत की शदीद मजम्मत की और हमलों के नतीजे में कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और दाखिला और सिक्योरिटी के उमूर में बढ़ते हुए ताबुन पर इत्मीनान का इजहार किया। लबनान के वजीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताबुन मजीद मजबूत बनाने की अपने मुल्क की ख्वाहिश का इरादा किया। वजीर आजम ने सजा याफ्ता अफराद की मुंतकली से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की, जिस पर दोनों मुल्कों के वज़राए दाखिला ने दस्तखत किए। खजानों महसूलात के वजीर सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तजारत को मुतनव्वे बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। वजीर खजाना ने दोनों ममालिक के दरमियान ज़रई शुबे और ज़रई अजनास में मजीद ताबन समेत मंडियों तक रसाई को वसत देने पर भी इत्तेफाक किया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफा इकतसादी ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी और इकतसादी ताबन को मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया।
وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بجلی کے شعبے میں عملی اور مقررہ مدت کے اندر اصلاحات کے عمل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں بجلی کے شعبے کے ریگولیٹری نظام میں بہتری اور اصلاحات سے متعلق رہبر کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے کارکردگی بہتر بنانے، مسابقت کے فروغ اور توانائی کے شعبے کی ترقی میں معاونت کے لیے نجی شعبے کی شرکت اور سرمایہ کاری کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ خزانہ و محصولات کے وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی سرکاری ملکیتی اداروں سے متعلق کمیٹی کا اجلاس اسلام شعبے کی شرکت اور سرمایہ کاری کی صلاحیت کو اجاگر کیا۔ خزانہ و محصولات کے وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت وفاقی کابینہ

0: एयरपोर्ट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: 101 Time Check. It's 7:30 AM.
1: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: From analog roots to digital perfection, 28 years of pure sound, local stories, and non-stop music. FM 101. The voice you trust.
5: This is FM 101, where your spirit is set free.
6: 101 FM.
7: Entertainment, ho ya updates, ye hai tumhari har mood ka dost.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
1: टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में. सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में.

0: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ, रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
1: 101 FM।
0: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ, रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
2: 101% pure. You are tuned into the one above. 101 FM.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: From analog roots to digital perfection, 28 years of pure sound, local stories, and non-stop music. FM 101, the voice you trust.
5: एंटरटेनमेंट हो या अपडेट्स, यह तुम्हारी हर मूड का दोस्त। रात हर बात FM 101 स्टेशन ऑफ द नेशन।
4: 101, द वॉइस यू ट्रस्ट।
5: एंटरटेनमेंट हो या अपडेट्स, यह तुम्हारी हर मूड का दोस्त।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से, इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से। पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।

0: Now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: Freak Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101
3: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई मुमालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वज़ीरे आज़म पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वज़ीरे आज़म खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है।
4: 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
3: खित्ते में

तन्हाइयों में जाने दे, अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेसार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

एनीवेज जी, करते हैं हम बात हमारे इस प्रोग्राम में ख्वातीन के हवाले से, रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से, ज़िंदगी में आने वाले हादसात के हवाले से, वाक़यात के हवाले से, उन लोगों के हवाले से जो बदल जाते हैं, उन लोगों के हवाले से जो आपके साथ तो चल रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं साथ नहीं चल रहे होते। साथ होने में और साथ देने में फ़र्क होता है ना, साथ चलने में और साथ रहने में फ़र्क होता है ना, बैकअप बनने में और बैकअप कहने में फर्क होता है ना, और इन सब फर्कों पे बात करेंगे आज हम। कुछ लोग बहुत लंबा अरसा एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं और फिर एक वक्त गुजरता है, एक वक्त आता है कि पता चलता है कि यार ये जो इतना वक्त था वहां मैं कहां था। ओए होए होए होए होए। एनीवेज जनाब, मौसम की सूरत हाल भी अगर बात करें तो मौसम थोड़ा सा तब्दील होता है और फिर वहीं का वहीं जाके कड़ा हो जाता है। कोई समझ नहीं आ रही है कि तब्दीली आ कहां रही है, मसला चेंज कहां पे हो रहा है। वो कहते हैं कि लोग मौसमों की तरह रंग बदलते हैं, यहां तो मौसम ही रंग नहीं बदल रहा था। मुझे लगता है मौसम का हवाला जो है ना लोगों में अपने ऊपर फिट कर लिया भाई, इसलिए मौसम कहता है मैं एनजी ठीक हूं। जिन्होंने आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उनको बताते चले कि आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे, हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मैसेजेस पे, 101 स्पेस नाम पे कमेंट सेंड कर दीजिएगा उसे 4471 पे। और इसके साथ साथ एक और चीज करनी है आपने, आप मुझे कॉल अभी नहीं कीजा, आप मुझे 12 के बाद मैं आपकी कॉल्स लूंगी 04211100101। आज का टॉपिक क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं ये बदलते मौसम के रंग आपको कैसे लग रहे हैं। आपको लग रहा है मौसम में कुछ तब्दीली आ रही है? मुझे तो कोई नहीं लग रहा, आज तो हमारा AC भी 16 पे चल रहा है तो कोई तब्दीली नहीं आ रही अभी मेरे ख्याल से। बारिशें हों, शायद कोई एक दो चार बारिशें हों, वैसे कहते हैं 15 सितंबर के बाद मौसम चेंज हो जाता है और 15 सितंबर आज है, यानी कि कल से शायद तब्दीली कुछ आना शुरू हो। 15 सितंबर के बाद रातें जो हैं वो ठंडी होना शुरू हो जाएंगी और 15 अक्टूबर के बाद दिन ठंडे होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है अभी, अभी हमने ये करना है कि अभी हम चलते हैं एक साथ दीजिएगा हमारे आज के प्रोग्राम में, मेरा मैसेजेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा। कोशिश करती हूँ मैं अभी अपनी लाइव भी ज्वाइन करूँ, लाइव को ऑन करूँ और उस पर आप मुझे ज़ोबिया शफीक के नाम से ZAUBIA SHAFQ पे सर्च करके लाइव भी मुझे ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर एक अदद कलाम लगाती हूँ फिर वापस आते हैं।

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और बात मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि बदलता मौसम, बदलते लोग, और मौसम जो ये बदल नहीं रहा है ना, इसके पीछे पता नहीं क्या राज छुपा हुआ है। शायद मौसम कह रहा है कि लोग बदल लेना, तो मैं बाद में बदल जाऊंगा, ऐसा कुछ भी तो हो सकता है। ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे, पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ उस पर, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। और इसके साथ साथ आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे पेज पर जुबिया शफीक के नाम से, और जुबिया शफीक सर्च करेंगे ना आप तो आपको पेज मिल जाएगा, उस पर मैं लाइव हूँ तो आप मुझे देख भी सकते हैं। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो चुके, और माएँ जो हैं वो सुकून में आ चुकी हैं। बदलते मौसम में जहाँ पे हम बात करते हैं, वहाँ पे इस टाइम पे जो है ना, वो ड्रेसिंग सेंस बड़ी मैटर करती है कि आपने ड्रेसिंग किस तरह की करनी है और आपने किस तरह की। अब ये वो टाइम है, यानी कि ये सितंबर अक्टूबर, और अक्टूबर ऑलमोस्ट अक्टूबर तक आपको नहीं पता चलना कि लॉन वियर करनी है या आपने जो है वो सिल्क की तरफ, शिफॉन की तरफ जाना है, क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का चल पड़ता है और उसमें सारे मामलात जो हैं वो बीच में मर्ज हो जाते हैं ना। तो इसलिए अपना ख्याल रखना है, पंखों से, पंखों की तरफ आना है। मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि आप ये जो बहुत ज़्यादा चिल वाला एसी चलाते हैं ना, चिल वाले एसी से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। आरजे साबिर बला गढ़ी गढ़ी, आरजे साबिर बला, इतना मुश्किल नाम। वेलकम जी, ज्वाइन कर रहे हैं आप मुझे, आपके बहुत सारे पैगामात मुझे फेसबुक पे भी रिसीव हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले एक सॉन्ग लगाते हैं और आपको गाना सुनाते हैं। मैंने जैसे आपको कहा था, मैंने कहा ज्वाइन करना है आपने मुझे, आपने मुझे बताना क्या है, क्या ख्याल है कि थोड़ा सा टॉपिक आपको बता दूं या फिर इस गाने पे चलें और गाने से वापस आएं और वापस आके फिर हम टॉपिक पे बात करें। यार मैं कभी कभी कहती हूँ, अक्सर मैं सोचती हूँ, बाज़ दफ़ा इंसान कह रहा होता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात चल रही हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे मामला चल रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, फिर उससे ज़्यादा होता है, और फिर आप उसे देखते हो, फिर आप उससे गुजरते हो, और फिर आप कहते हो कि यार हाँ वाकई इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था। इसलिए हमेशा तवक्कुल रखें, हमेशा खुश रहना सीखें अपनी मौजूदा सूरत हाल से। दुआ ज़रूर आप करें, लेकिन इसके साथ साथ शुक्र भी अदा किया करें, क्योंकि अगर हम एक सांस लेने का, ये जो हम सांस का हमारे का अमल चल रहा होता है ना, इसमें भी शुक्र अदा करें ना। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाके किसी ऐसे पेशेंट को देखें जिसकी सांस की नाली लगी हुई है, तो यकीनन हमें अंदाज़ा होगा कि ये भी कितनी बड़ी नेमत है। तो इन नेमतों का शुक्र अदा किया करें, और ज़िंदगी गुजर जाती है। आज मैंने आपसे ये पूछना है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा इंसान है, आपको लगता है आप उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते? ये मुझे बताइएगा, किसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते?

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और लेडीज लाउंज में हम बात क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या है आपको लगता है जिसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। और ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ने का फ़ैसला करते हैं या ज़िंदगी जीने का फ़ैसला करते हैं या ज़िंदा रहने का फ़ैसला करते हैं, ज़िंदा रहना इन दी सेंस कि आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं कुछ सिचुएशन, तो उन सिचुएशंस में आप कुछ लोगों को अपने लिए मुंतखब करते हैं ना, आप कहते हैं कि ये लोग होने चाहिए मेरी इस लिस्ट में। जैसे कभी हमने ट्रिप पर जाना हो, कभी हमने कहीं जाना हो, नासिर जावेद थैंक यू सो मच। अच्छा, जब हमने कभी जाना हो किसी अकैन में, किसी शादी में, किसी पिकनिक पे या किसी भी इवेंट पे, तो हम कहते हैं कि फ़ला इंसान मौजूद होना चाहिए, अगर ये होगा तो गैदरिंग अच्छी हो जाएगी, सफ़र अच्छा हो जाएगा या उस इंसान के साथ सफ़र अच्छा गुजरता है। और कभी शादी हो तो हम कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो शादी जो है ना वो इंजॉय की जाएगी अगर ये साथ में होगा, अगर मेरे साथ कोई गैदरिंग ही मौजूद नहीं होगी तो मैंने इंजॉय क्या करना है, मैंने जाना है कहाँ है, क्या लेने जाना है। बाज़ दफ़ा बहुत ही खूबसूरत सी जो जगह होती है, बहुत अच्छी जो जगह होती है, वो भी आपको बेमायनी सी लगती है जब आपके साथ कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं होता या आपके साथ कंपनी ऐसी मौजूद नहीं होती जिनके साथ आप इंजॉय कर सकें। लास्ट टाइम एक इवेंट था और मुझे उन्होंने इनवाइट किया और मैंने उन बहुत ही जो है ना वो आप कह लो कि बड़े बहाने किए कि नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ टाइम के लिए आप जो है ना वो आ जाए। मैंने अपने साथ अपने एक फ्रेंड को तैयार किया, मैंने कहा कि आप ना मेरे साथ चलो, मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं अकेली तो नहीं आ सकती, तो साथ मेरी फ्रेंड आएंगी। वो फ्रेंड जब वो टाइम टू टाइम था तो वो मुझसे कहने लगी कि यार उनका फैमिली में एक सीरियस इशू हो गया, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकती। अब वो टाइम ऐसा था कि लास्ट वन वीक से वो मुझे बार बार बार बार रिमाइंडर करवा रहे थे कि प्लीज़ आपने आना है, तो मुझे मुनासिब नहीं उस टाइम पे लगा कि मैं उनको जो है ना वो इनकार करूँ एट द स्पॉट, रात के कोई 8-11-12 का टाइम था, मुझे जाना पड़ा। और मैं सारा दिन, अब वो मुझे कह रहे हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, वहाँ मतलब एंटरटेनमेंट यू नो फुल थी उधर, लेकिन मैं जो थी वो बहुत बोर हुई, बहुत बोर हुई। इस वजह से वो वहाँ फिर एक रूम था जहाँ उन्होंने बैठने का वैसे इंतज़ाम किया हुआ था, वो बेसिकली वो एक फार्म हाउस टाइप था और वहाँ पर उन्होंने पूरा एक पिकनिक का इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत सारे लोग थे वहाँ, लगभग जो हैं वो 50-60 राउंड अबाउट इतने लोग थे, लेकिन उन तमाम लोगों में मुझे लग रहा था कि यार मैं इतनी शदीद वाली बोर हुई हूँ ना मतलब किसी को वो बेजारी मेरी चेहरे से नज़र आ रही थी सबको मैं इतनी बोर। और मुझे एंड में उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा कैसा रहा, तो वो पास एक साहब ने कहा, उन्होंने कहा आज ना पूछो आज बहुत सख्त जवाब मिलना है। पॉइंट ये है कि बाज़ दफ़ा हम ज़िंदगी में चूज़ करते हैं अपने लिए कुछ लोगों को, मुंतखब करते हैं, इसी तरह जब ज़िंदगी जीने की बात होती है तो हम तब भी कुछ लोगों को मुंतखब करते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी, सपोज शादी की अगर बात होती है तो कुछ लोग स्पेसिफिक एक कुछ ख़वातीन या मर्द हज़रात जो होते हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है ये खातून या ये जो बंदा है तो फिर मैं इससे शादी करूँगी, और अगर शादी हमारी हो जाती है या इस टाइप के बंदे से शादी हो जाती है तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना। खैर ये हमने आज, मैंने आपसे आज पूछना है। साजिदा की हमें ऑफ एयर कॉल आई, बहुत शुक्रिया साजिदा, थैंक यू सो मच। कहती है मुझे लगा आप नहीं आएंगी, मैंने कहा आपको क्यों लगा मैं नहीं आऊँगी मतलब कोई वजह थी जिसकी वजह से आपको लगा। राहील अली थैंक यू सो मच, कहते हैं माशाल्लाह गुड एटीट्यूड, एटीट्यूड एटीट्यूड कहाँ दिखाया मैंने अभी राहील एटीट्यूड कहा मैंने, मैंने तो कोई एटीट्यूड शो नहीं करवाया, हाँ मैंने ये ज़रूर कहा, मैंने कहा आज थोड़ी सी ना मैं लो हूँ, मेरी एनर्जी शायद मुझे लग रहा है लेकिन आपने मेरा साथ देना है, मैसेजेस करने हैं। बाज़ दफ़ा होता है ना ज़िंदगी में आप कुछ चीज़ों से गुजर रहे होते हो, थोड़े से लो भी हो जाते हो, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, आसानी यकीनन आती है। 04-2111-0101 our dialing number, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। ज़ुबिया शफीक के नाम से मेरा पेज है, वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, स्टिक कराऊंगा।

वेलकम बैक जी, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो। इट्स मी ज़ुबैर शफीक। 11:31 हो चुके और मुझे लाइव पे ज्वाइन किया है राहील अली। गुड अच्छा सफदर अली वाचिंग ब्रिंग दी। अच्छा आप कह रहे हैं कि ब्राइट थीम ऑन करूं, ऐसे ही ठीक है आगर ब्राइट थीम ऑन करके कहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फिर 101 के ऑफिशियल पेज पे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। आपके कुछ पैगाम हैं मेरे सामने, उनको मैं साथ में शामिल करूंगी। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मुझे ये बताना है, उस्मान साहब की कॉल आई मुझे ऑफ ईयर और कह रहे थे कि रात मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं बोर हो गया, एक जगह पर गया था, बोर हो गया शायद इसका वो इसीलिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का ताल्लुक आपके दिल के मौसम से वाबस्ता होता है, मुंसलिक होता है। अगर आपके दिल का मौसम अच्छा है तो सब मौसम अच्छे हैं, अगर दिल का मौसम अच्छा नहीं है तो फिर कख अच्छा नहीं है। फिर आप कहीं भी चले जाओ ज़िंदगी में, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप जो है ना वो उससे इंजॉय नहीं कर सकते, आप उस मोमेंट को इंजॉय नहीं कर सकते, आप उधर रह नहीं सकते अगर आप जो है वो इंटरनली तौर पर कहीं और मौजूद हो तो। और यहाँ पे हमारे साथ हमें ज्वाइन किया जी इफ्तिखार अहमद ने। अस्सलामु अलैकुम सिस्टर, हाउ आर यू, योर प्रोग्राम इज़ वेरी गुड, यू हैव अ वेरी गुड स्टाइल। अच्छा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, आपने इतनी तारीफ की। ज़ाहद खान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। फिरोज़ आलम हमारे साथ मौजूद हैं जी सऊदी अरेबिया से हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। नईम टेलर हमारे साथ है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। ज़िंदगी में हम जीने की बात करते हैं, ज़िंदगी में हम साथ रहने की बात करते हैं। कंवल नाज आ गई, अली बरकत होम्योपैथी। अच्छा जी अली बरकत होम्योपैथी का मुझे लाइव पे ज्वाइन कर रहे हैं, कहते हैं एक्सीलेंट इकते होने, ये क्या होगा ये मुझे समझ नहीं आएगी, ये गुजरते जाएंगे कमेंट और पता नहीं चलेगा। चलिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। हमारे साथ कंवल नाज भी आ गई, हमें ज्वाइन किया। बात मैं कह रही हूँ कि ज़िंदगी गुजारने की जहाँ हम बात करते हैं, जहाँ हम रहने की बात करते हैं, तो हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को ना हम नोट करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। हमने अपने कमरे को सेट करना हो ना, घर बनाना हो, तो बहुत सारी मोटिवेशन होती हैं कि हम अपना घर बनाएंगे ना, तो इस घर में ये डेकोरेशन रखेंगे, मैं अपना घर बनाऊँगी तो इस घर को इस तरह से सेट करूँगी। लड़कियों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लड़कों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं। लड़कों को होता है कि घर बनाऊंगा या गाड़ी लूंगा तो मैंने इस तरह की गाड़ी लेनी है, मैंने बाइक लेनी है तो उसको इस तरह से डिकोर करना है, उसको इस तरह से सेट रखना है। तो इस तरह जब हमने ज़िंदगी गुजारने का फैसला करना होता है, जब हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो कुछ चीज़ें, कुछ क्राइटेरियाज रखे होते हैं। हम कहते हैं कि इन चीज़ों पर जो इंसान पूरा उतरता है तो उसको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, दिस इज़ पॉइंट। और फिर इसके साथ साथ फिर बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि हम कहते हैं कि अगर ये इंसान नहीं मिला ना तो फिर तो ख़त्म निश्ता फिर नहीं रह सकते हम, फिर नहीं चल सकते हम, और या फिर कुछ सालों बाद जाके बंदा हंसता है, हो हो मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस हैं, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया मलाल भी नहीं। फिर ये वाले मामलात होते होते हैं और इंसान हंसता है कि क्या क्या था आगे, मैं क्या कह रहा था अच्छा जी एक गाना मैंने काफी टाइम पहले लगाया था तो सोच रही थी कि आज उसे लगाऊं। और इसी तरह जब हम बात करते हैं कि इन स्पेसिफिक चीज़ों के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, तो उनमें आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे क्या चीज़ आती है ये आपने मुझे बताना है। बताने का तरीका बहुत ही आसान है, मोबाइल की राइट ऑप्शन में जाइएगा, 101 स्पेस नाम पे काम लिखिएगा और सेंड कर दीजिएगा उसको 4471 पे। FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट कीजिएगा, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। और इसके साथ साथ एक और काम कीजिएगा, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी लाइव पे, ज़ुबैर शफीक के नाम से मुझे लाइव पे ज्वाइन कीजिएगा। आपका पेज नहीं मिल रहा, नहीं ZAUBIASHAFIQ ज़ुबैर शफीक के नाम से है। मेरे बस चले ना आज मैं सारे दुखी गाने लाता पर नहीं, मॉर्निंग प्रोग्राम
गानों का मामला भी आपके अपने आप से ही होता है, होता है ऐसा। चलिए खैर, सुने जी ये खूबसूरत सा ट्रैक और फिर वापस आते हैं। आपके जो लाइव पे आए हुए मैसेजेस हैं उनको भी मैं शामिल करती हूँ लेकिन इस गाने के बाद।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इहादा किया है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इसके अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इहादा किया है। सदर मुमलिकत ने जोर दिया है कि चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सबसे अहम पहलू हैं। और भारत की स्टॉक मार्केट में आलमी सरमायाकारी 17 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का अयादा किया है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और इसके अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम जारी रखेगी। उन्होंने ये बात खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी से इस्लामाबाद में मुलाकात में कही। मुलाकात के दौरान सूबे के मजमू सियासी सूरत हाल, अमन अमान और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी और अवामी मसाइल हल करने के लिए मजीद कोशिशों पर भी जोर दिया गया।
1: This is FM
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: काशिफ महमूद काशिफ कहते हैं ऑक्सीजन के बगैर. वेरी गुड, जबरदस्त. कंवल नाज कहती हैं जी मेरी रूह तरसती है तेरी खुशबू के लिए, तो कहीं और जो महके तो तकलीफ होगी. कंवल क्यों इतने टूटे हुए शेर भेज रही हो मुझे. अच्छा जी, यहाँ पे एक गाना लगाने लगी हूँ मैं, सुनिएगा ये गाना और फिर हम आते हैं वापस, आगे करते हैं आपसे बातचीत. तेरा शर्माना मेरी जाना.
1: तेरा शर्माना मेरी जान.
0: एंजॉय करें.

अच्छा जी, वेलकम बैक। दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो। इट्स मी जुबैर शफीक। 12:15 मेहरान मलिक हमारे साथ। सुबह बखैर कहते हैं, क्या हो गया है आपको? दोपहर का टाइम हो गया, ये आपकी सुबह हुई है अभी। हैव अ नाइस डे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। लाइव पे मुझे ज्वाइन करें, जुबैर शफीक के नाम से पेज है, वहां पे मैं लाइव आई हूँ। और इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफएम 101

0: ऑफिशियल पेज पे जाएं, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कमेंट करें और हमारे साथ शामिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम, मैं फरी बात कर रही हूँ
0: जी।
1: मेरी बात कार कट गई थी तो हवा पानी और खुराक के बगैर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं।
0: ठीक है
2: ठीक है।
1: हाँ जी, तो आज का शो बड़ा अच्छा है। पूरी मैनेजमेंट, आरजे डॉक्टर, आरजे वसीम अहमद और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। शमसी ग्रुप वालों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।
0: ईमान अल्लाह जी। अच्छा जी, जाहिद खान हमारे साथ हैं, कहते हैं गुड आफ्टरनून, दिस इज ग्रेट शो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया पसंद करने का। नबील शेख हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी।
3: मैं साजिदा बात कर रही हूं।
0: जी साजिदा जी, साजिदा जी जी बोले।
3: हाँ जी, हाँ, तो मैं टफी के बारे में कहना चाहूंगी। मैं खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और सांस लेने के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि पानी और खाना हमारे लिए जैसे हम यानी दोनों के बगैर नहीं जिंदा रह सकते।
0: ठीक हो गया।
3: आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं। अपना सब सुनने वालों को सलाम लिखूँ और आप अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।
0: बहुत शुक्रिया साजिदा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया साजिदा। अथर मुगल हमारे साथ, आप अच्छी होस्ट भी हैं और डॉक्टर भी, इतना टाइम कैसे निकाल लेती हैं, सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैं कर लेती हूँ जिंदगी में और करना क्या है यही कुछ तो है। थैंक यू सो मच अथर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम बात करते हैं थोड़ी सी, चलें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, बाज़ दफ़ा आप बहुत अच्छे होते हो, आप बहुत अच्छे होते हो ना, तो आपकी अच्छाई का फ़ायदा जो है ना, वो भी बहुत सारे लोग उठा रहे होते हैं। मैंने तो बहुत सारी जगह पे ये देखा है, अभी कुछ टाइम पहले हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे थे कि आप जब अवेलेबल रहते हो ना बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी सिचुएशन में, आप कहते हो कि मैं अवेलेबल हूँ, या हम कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाओ। आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, आप अपने हक के लिए बात नहीं करोगे ना, कोई आपकी जगह पे आके बात नहीं करेगा। किसी इंसान का हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि यार इस इंसान को रहने दो, इसको बोलने दो, या इसको बात करने दो, इसको जवाब ना दो, या इसको इसके काम में लगा रहने दो। ओके, इसको इसके काम में लगा रहने दो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपकी जो बहुत ज़्यादा अच्छाई होती है ना, वो भी आपके सर पे सवार हो जाती है, वो भी आपको जो है ना, आपके लिए वो तंगी का बायस, वो मुश्किल का बायस, वो परेशानी का बायस बन जाती है। इसलिए कुछ लोगों को उनकी जगह पे रहने देना चाहिए, इतनी ज़्यादा उनको वैल्यू नहीं देनी चाहिए कि वो अपने आप को कुछ और ही समझने लग जाए। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: जी वालेकुम अस्सलाम
0: जी। कौन हमारे साथ?
4: मैं ईशा बात कर रही हूँ लाहौर से।
0: ईशा कैसी हैं आप?
4: अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी और टॉपिक के मुताबिक बोलना चाहूंगी कुछ।
0: जी बोलिए।
4: आपका क्वेश्चन है कि हम किस चीज के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं अपने बारे में बताऊंगी, मैं अपनी ग्लासेस के बगैर जिंदा नहीं रह सकती।
0: अच्छा ईशा, मुझे ये बताओ, ग्लासेस अक्सर ना, मेरी एक फ्रेंड है वो ग्लासेस लगाती है, तो कभी उसकी ग्लासेस उतरी हो ना तो वो कहती है मुझे सुनाई भी नहीं देता, इज इट पॉसिबल?
4: नहीं, नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल।
0: तो फिर
4: दैट पॉसिबल,
0: वो कहती है मुझे सुनाई भी नहीं देता। मतलब मैंने कहा तुम्हारी आंखों का ताल्लुक तुम्हारे कानों के साथ होता है, आंख नाक कान, लेकिन इतना ज्यादा कनेक्टेड होता है ये तो नहीं। अच्छा,
4: ये तो एक्सट्रीम कनेक्शन है ना।
0: आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको दिखाई नहीं दे रहा और आपको सही सुनाई भी नहीं दे रहा?
4: नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ हुआ, लेकिन मेरी आई साइट वीक है दूर की काफी, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अगर कोई चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज माई ग्लासेस, मैं उसके बगैर कभी नहीं रह सकती।
0: हाँ हाँ, ये भी है, गुड हो गया। और क्या कहेंगी ईशा, फर्स्ट टाइम कॉल किया आपने?
4: एक्चुअली रिसेंटली मुझे, हम एक ट्रिप पर थे, तो मुझे था कि जब मैं छोटी होती थी, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास या 7th क्लास, तब मुझे रेडियो का बहुत शौक था, बल्कि आई वांटेड टू बिकम आरजे। कि मैं एक आरजे हूँ ये और लोग मुझे सुनेंगे इस तरह से ना, उस टाइम पर ये रेडियो का ट्रेंड भी ज्यादा होता था.
0: हाँ, ठीक है.
4: तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, नाउ रिसेंटली आई हैव बीन मैरिड, और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी रेडियो सुनते हैं हम जब ट्रिप पर थे, तो मुझे कहते हैं आप कहाँ रेडियो सुनने का कह रही हो. मैंने कहा जब मैं छोटी थी हम रेडियो सुनते होते थे, तो तब वो फोन होते थे दूसरे वाले,
0: हाँ हाँ,
4: तो उस पर हम प्लग इन करके ना हेडसेट,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: उस पर रेडियो सुनते होते थे. तो आई वॉज सेइंग हिम कि भाई हम रेडियो सुनते हैं, तो वो मुझे दोबारा से रिमाइंड हुआ सारा कि भाई मैंने रेडियो दोबारा सुनना शुरू करना है, कि ट्रेंड कोई जाता थोड़ी है. तो इसीलिए
0: ट्रेंड तो हम खुद बनाते हैं. अभी आपने देखा नहीं वो 80s का ट्रेंड चल रहा है. सारे हमारे जेन ज़ी जो है वो 80s के बने हुए हैं.
4: एग्जैक्टली.
0: हाँ, तो ट्रेंड हम बनाते हैं
4: और हम बहुत मिनिमल से ट्रेंड को बहुत वायरल कर देते हैं. तो बस मुझे लगता है कि ये वापस आना चाहिए रेडियो का ट्रेंड, क्योंकि इससे मजा आता था.
0: होपफुली आएगा,
4: जरूरी नहीं है.
0: वो कहते हैं ना कि चीजें अपने असल की तरफ लौटती हैं.
4: हम वेट करते थे कि प्रोग्राम आएगा और फिर उससे करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे उसको. हालांकि विजुअल्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो सुनने में बहुत मजा आता था. 11 बजे का प्रोग्राम आएगा, 10 बजे का आएगा. तो बस that's why I downloaded the app.
0: अच्छा, उसकी जो एक वो धुन होती थी ना, जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होता था, उसके साथ भी एक इश्क हो जाता था.
4: बिल्कुल. और फिर ना वो जो रात में खामोशी में सुनना रेडियो,
0: हाँ.
4: मैंने और मेरी मामा ने बैठ के सुनना, हाँ. रेडियो, और बहुत इतना मजा आता था. मैं इतनी पुरानी भी नहीं
0: हूँ, लेकिन उस टाइम नहीं, ये आप देखे ना, ये 12 और 13 का राउंड अबाउट है. ये जो 10 से 16 के दरमियान में एक पीक थी.
4: बिल्कुल बिल्कुल.
0: हाँ, तो इतना पुराना तो मैं आपको कह भी नहीं रही हूँ. चलें, वाह, शुक्रिया ईशा, बहुत अच्छा लगा. दोबारा जरूर आइएगा. थैंक यू.
4: थैंक यू.

सर तिशाती जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एस नवाज हमारे साथ कहते हैं मैम तीतल। ओके ओके। मलिक महबूब हुसैन तबस्सुम हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नवाजिश। ये गाना सुने, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है, इसको एंजॉय करें। हम वापस आते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आप किसके बगैर नहीं रह सकते? जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी के बगैर कहते हैं कि हम नहीं रह सकते, और फिर हम नहीं रह सकते, फिर हम नहीं रहते। Is it possible? ये आपने मुझे बताना है।

0: वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक। और आज हम बात कर रहे हैं जी, आपने मुझे बता रहे हैं कि किस चीज़ के बगैर जिंदा नहीं रहते। अच्छा, रिसेंटली एक ना ड्रामा सीरियल, लास्ट टाइम भी हमने बात की, उसकी एंडिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कर दी है उन्होंने, इज्जत आपकी, बहुत अच्छा ड्रामा। ख़वातीन के हवाले से जहाँ हम बात करते हैं, तो ख़वातीन के हवाले से एक चीज़ ना, सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है बच्चियों को, छोटी सी जब बच्ची होती है, बहन भाइयों में बहन को सेक्रीफाइस करना सिखा दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारा भाई है ना, अपने हिस्से की रोटी भी दे देती है अक्सर। अच्छा, भाई को पहले खाने दो, भाई है ना तुम्हारा, फिर उसके बाद वो थोड़ी बड़ी होती है तो फिर सेक्रीफाइस की मतलब सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है। फिर शादी होती है, सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है। आफ्टर मैरिज बच्चे हो जाते हैं, फिर सेक्रीफाइस करना सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब वो कर चुकी होती है, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता ना उसकी बहुत सारी चीज़ों को, फिर वहाँ पर जाके मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं इंसान गुस्से में आके, वो कहते हैं ना कि गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, गुस्से में आके इंसान कभी कभी ऐसा फैसला कर लेता है कि वो फैसला उसके लिए भी अच्छा नहीं होता। मंजूर हुसैन अंसारी हमारे साथ हैं, तो बहुत शुक्रिया जी। तो ये एक बहुत ही अच्छा ड्रामा दिखाया और जिसकी एंडिंग अनडाउटेडली बहुत अच्छी कर दी उन्होंने, मतलब बहुत अच्छी एंडिंग कर दी। वो आप एंडिंग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे उसकी एंडिंग बहुत पसंद आई। मनाजर महमूद मनाजर ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। 04221100101, अस्सलाम वालेकुम जी।
1: हेलो
0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम जी, जुबिया शफीक साहब
0: जी, जुबिया बात कर रही
1: हूँ। आपको और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से
0: जी। सलमान साहब क्या कहिएगा,
1: बस यही है कि वही रिश्ते होते हैं जिनके बगैर इंसान एक पल नहीं रह सकता, वही रिश्ते होते हैं, तो बार ये मजबूरी होती है, बस इसीलिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनसे पहले हमें ले जाना, ये दुख बड़ा गहरा होता है। बाकी आदत होती है, आदतें हो जाती हैं, मुझे तो जिसकी भी आदत हुई है उसने नखरे ही दिखाए हैं जिंदगी में, जिससे तो ये आवाज आ रही है
0: जी, जी सुन रही हूँ मैं।
1: अच्छा, वो एक है कि एक आंटी, एक दफा आपकी आंटी की मिसाई के घर गई हुई थी अपनी दोस्त, तो मैंने यकीन करें एक मिनट में 10 घरों में तलाश कर लिया, यानी कि ये आदत हो जाती है ना इंसान को, आदत हो जाती
0: है, बिल्कुल ऐसी है आदत।
1: हाँ जी, तो ये मैं ऑनर ही हूँ या ऑफिस
0: जी? आप ऑनर है,
1: रिटायर बंदों की हमेशा ऑफियर ही मिलती है।
0: नहीं नहीं, आप ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर।
1: तो बेटा ये बस आदतें हो जाती हैं इंसान, अल्लाह पाक जो हयात हैं इन्हें सेहत सलामती वाली, आप सबको सेहत सलामती वाली जिंदगी, लंबी जिंदगी दे,
0: इलाही आमीन,
1: से चलेंगे अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल फरदौस में आला जगह दे। आदतें हो जाती हैं इंसान को एक दूसरे की, तो बस इनकी खैर ख्वाही के लिए दुआ करनी चाहिए।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात की आदतें हो जाती हैं, और वो कहते हैं कि आदत ज़्यादा तकलीफ दे होती है आपको, किसी की आदत होगी ना, मोहब्बत जो होती है ना वो फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती है ख़ुद को, आदत एडजस्ट नहीं करती, आदतें ज़्यादा मुश्किल होती हैं, आदतों को छोड़ना ज़्यादा तकलीफ दे होता है, आदतों से हटना गुरेज करना ज़्यादा तकलीफ दे होता है। अब्दुल्ला मलखेल, बहुत शुक्रिया आपका, आप मैंने मैसेज किया, अगर हर मसले के बाद आपको दिल बड़ा करना पड़े तो समझ जाए कि आप छोटे दिल के लोगों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने का जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से?
2: कमलनाथ बोल रही हूँ।
0: हाय कमल, कैसी हैं आप? सोचो जरा, मैं आज वाजे नहीं पहचान पा रही।
2: क्यों, क्या हुआ है?
0: तेरा गम मेरा गम एक जैसा सा। कमल कैसी हैं आप, क्या कहिएगा?
2: हाँ जी, अक्सर हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत दर्द होता है।
0: नहीं इतना भी नहीं है, माड़ा को
2: माड़ा
0: को
2: अल्लाह ने आपको खुशबाद रखे,
0: आमीन।
2: किसी की जिंदगी में कोई दुख गम ना है, वैसे जिंदगी का मामला है, दुख सुख जिंदगी में आते रहते हैं। और बात कर रही थी आपके, किसी कौन सा इंसान है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते?
0: मैंने कहा क्या चीज है ऐसी, कोई इंसान है, कोई चीज है जिसके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल लगती है?
2: अगर इस चीज का नाम लें तो वो फिर ज्यादा जरूरी जिंदा रहने के लिए हर इंसान का हवा पानी और खुराक की जरूरत है।
0: ठीक है।
2: और अगर आप इंसानों की बात करें तो इंसान तो है वो जिंदगी में आते जाते रहते हैं।
0: ठीक है।
2: और हमारे अपने जो रिश्ते होते हैं वो भी मुसलसल किसी के साथ हो तो हम नहीं किसी के साथ भी रह सकते, कोई जिसने दुनिया में आया है उसने जाना भी है।
0: ठीक है।
2: और हम अपने माँ बाप के बगैर जब दुनिया में चले जाते हैं हम सरवाइव करते हैं उनके बगैर, खाते हैं पीते हैं जीते हैं, तो फिर दूसरे बकाया सारे रिश्ते तो फिर बाद में आते हैं ना।
0: पॉइंट है, अच्छी बात
2: जी। और माँ बाप के बाद अपनी औलाद होती है जो कि हर किसी को बहुत प्यारी होती है।
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी।
2: और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम अपनी औलाद से भी दूर होते हैं। तो ये तो जिंदगी के मामलात हैं, जो मिलता है वो बिछड़ता भी है, जो आता है वो जाता भी है। बस जो जितनी देर भी किसी के साथ रहो अच्छे तरीके से रहो, अच्छा बर्ताव करो कि अगर आप किसी के साथ जुदा भी हो जाओ तो वो आपको कल को याद करे, अच्छे लफ्जों में याद करे। और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को बहुत ज्यादा एहतराम के साथ
0: थैंक यू सो मच। कवल बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। ले जी हम करने लगे हैं मूड थोड़ा सा चेंज, थोड़ा फास्टर फास्टर चलते हैं। अब बहुत उदास कर लिया, बहुत उदास हो लिया। बात करते हैं हम छड़िया ते मर जाऊंगा कोई नहीं मर दे झूठ। कमलनाथ हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया जी। 04221100111 डायलिंग नंबर में आपसे पूछ रही हूँ ऐसी कौन सी चीज है जिसके बगैर आपको लगता है जिंदा नहीं रह सकते। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे इंटरनेट। कभी किसी के घर मेहमान जाओ ना, सबसे पहले क्या पूछा जाता है? चार्जर है, सी टाइप है देखा ना, फिर जिंदगी तो गुजारनी पड़ती है कैसा भी है। मेरा तो है ना।

क्या ख्याल है आपका? चेंज करना चाहिए थोड़ा सा। हमें ज्वाइन कर सकते हैं 04211100111 डायलिंग नंबर। मुझे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव आप मेरे ऑफिशियल पेज पे, जुबिया शफीक के नाम से पेज है जी, आप वहां मुझे सर्च करें। इसके साथ साथ आप मुझे एफएम मोनोमन के ऑफिशियल पेज पे पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। कितने तरीके हैं आपके पास कि आप आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सड़दाए ये जो सड़ने वाले होते हैं ना, अल्लाह इनका भला करे, काम शुरू बाद में कोई होता है।

0: 12:35 हो चुके हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने मुझे बताना है किसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते या जिंदगी मुश्किल हो जाती है। 04211001011। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: लाहौर शाहजा से मोहम्मद नवीद साहब बात कर रहे
2: हैं। नवीद साहब बताइएगा क्या कहेंगे।
1: मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आजकल का जो वक्त है, जो दौर है ना, मेरी नजर के जो सामने है ना, वो सबसे मुश्किल मोबाइल के बगैर रहना हो गया वो हमको।
0: ठीक है, लेकिन फिर भी जब सिग्नल नहीं आते या जब कोई नेट नहीं होता तो रहते हैं ना हम।
1: वो तो रहते हैं, तो वो जो रहते हैं तो उनको रहने की रीजन भी सब कुछ है ना, वो क्या क्या बहाने नहीं मिलते हमको।
0: ठीक हो गया।
1: छह घंटे प्यास लगी हो तो अल्लाह की मेहरबानी से टिकटॉक तो बंद नहीं ना होता, शायद प्यास ही अल्लाह तो बहा चल।
0: ठीक है ठीक है, सही बात कर रहे हैं आप। और कुछ कहेंगे?
1: मैं बस यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज़ जा रही है, सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपकी पूरी मैनेजमेंट को दोनों हाथों से मेरा सलाम।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहते हैं जी मोबाइल के बगैर जो है ना वो जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इज दैट ट्रू? बताएं ना जरा मुझे, कमेंट करें, कमेंट्स में आएं और आके मुझे बताएं कि ये जो कह रहे हैं साहब ये ठीक कह रहे हैं। वैसे कहते तो वो ठीक है, आप घर वाले से बात कर लेते हो यार जब मोबाइल सिग्नल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है
0: आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन हमारे साथ, कहाँ से?
3: लाहौर से।
0: क्या कहिएगा,
3: बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली मैं तो टॉपिक के लिस्ट में ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरा खुद में अपनी लाइफ
0: अल्हम्दुलिल्लाह खैर, आपकी कॉल जो है ना वो गई कट और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन हमारे साथ, कहाँ से?
4: मोहब्बती मारुमल फ्रॉम यूके से।
0: अरे वाह, इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं आप, कैसे हैं, क्या कहिएगा?
4: इतना दूर नहीं, थोड़ा करीब आ गया, यूके फॉर उमरकोट से, उमरकोट से।
0: गुड हो गया। क्या कहिएगा, आई लाइक इट।
4: किसी तरह आपको हंसता मुस्कुराता रखे मैडम जी, बहुत कोशिश की आज। एक तो आप इतना स्पीड में नंबर बता दिए, जो ना डायल करने में, नंबर याद करने में बड़ा टाइम लगा, 2-3 बार मैंने नंबर जो मतलब याद करने की कोशिश की, नंबर ही नहीं याद हो रहा था।
0: ओहो सॉरी।
4: बाकी माशाल्लाह प्रोग्राम आप बहुत अच्छा कर रही है, मैं रेगुलर सुनने वाला हूँ लेकिन साइलेंट लिसनर था। तो मैं बेसिकली उमरकोट से हूँ, रहता हूँ उमरकोट में, लेकिन आपके शहर लाहौर से मतलब अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो यहाँ से जॉब करता हूँ।
0: वेरी गुड वेरी गुड
4: जी मैडम,
0: जबरदस्त। क्या कहिएगा उमर, मुझे ये बताएं कि किस चीज के बगैर जिंदा इंसान का रहना लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है।
4: आजकल के दौर के हिसाब से मैं कहता हूँ मोबाइल के बगैर बंदा जो ना जिंदा नहीं रह सकता।
0: ठीक है,
4: हाँ जी,
0: बस
4: यही है, क्योंकि मोबाइल, अगर मोबाइल को दुरुस्त यूज किया जाए तो मैं कहता हूँ मोबाइल से अच्छा कोई दोस्त नहीं, अगर उसको रॉन्ग किया जाए उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं।
0: हाँ ठीक है ठीक है,
4: कमेंट्स में बाकी
0: ओके। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाय हाय, कहते हैं कि मोबाइल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हम, और

0: हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: आई वांट के आप लाइन पे रहते, मैंने आपको होल्ड करवाया था। हमारे साथ मौजूद थे लियाकत साहब, और क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि आंखों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल होता है ये भी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से?
2: जी मैं अक्षर बोल रहा हूँ, शाहपुरा चौक से।
1: क्या कहिएगा?
2: आगे भी बोल जी, आपने रखा कि इंसान जिंदा कैसे रह सकता है, अगर जब सांस नहीं होगी तो फिर इंसान जिंदा कैसे रहेगा? सांस आएगी तो इंसान जिंदा रहेगा ना। कोई खा पीना सब खत्म हो जाता है, जब सांस बंद होगी सब बंद हो गया।
1: सही कह रहे हैं,
2: सांस आएगी तो ठीक रहेगा ना।
1: ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है जी।
2: क्योंकि खाना पीना मोबाइल वगैरह सब सब गलत है, जब सांस बंद होगी इंसान खत्म हो जाएगा।
1: हाँ सही कह रहे हैं,
2: कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सांस बंद होगी इंसान खत्म हो गया।
1: ठीक कह रहे हैं,
2: आप भी दुआ करें मेरी टांग ठीक हो जाए। मैं
1: इलाही आमीन,
2: मेरी टांग कटी हुई है, टांग कटी हुई है, जाकर मैं ठीक हो जाऊँ।
1: इलाही आमीन, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जी, बहुत शुक्रिया जी।
2: आप ठीक हो बजी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
2: बजी सबको सुनने वाले सबको सलाम, सलाम मेरे,
1: सलाम
2: मेरे, ठीक है।
1: वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सांस नहीं होगी तो फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे। और यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगी, हमारे बहुत ही अच्छे आरजे, हमारे बहुत ही सब लोग आप सब लोग यकीनन उन्हें जानते हैं, और रात का प्रोग्राम करते हैं ज़िया अंजुम साहब, बहुत अच्छी आवाज़, एफएम 101 का एक बहुत अच्छा नाम। बीमार हैं, उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, आप सबसे गुजारिश है कि आप उनके लिए लाजमी तौर पर दुआ कीजिएगा, स्पेशल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और वो दोबारा से ही हम में आएँ और दोबारा से इसी तरह आके आपको इंटरटेन करें, आपके साथ प्रोग्राम में, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों, वो अपना प्रोग्राम करें, और उसके जिस तरह वो नटखट हरकतें करते हैं, शरारतें करते हैं, वो उसी तरह शरारती अंदाज में हमारे साथ शामिल हों। स्पेशली जो है ना, वो अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइएगा, स्पेशली दुआ कीजिएगा, और दुआ करके उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए लाजमी तौर पर। और ओके, मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, आप किस चीज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ये मुझे आपने बताना है। 04221100101। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, वेरी गुड, अब आप ऐसे करेंगे। अच्छा जी, कमल कहती हैं कि अल्लाह ताला ज़िया अंजुम साहब को अच्छी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा जी, आप एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाके, मुझे मैंने पोस्ट कर दी है, वहाँ जाके मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस चीज़ के बगैर ज़िंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: जी वालेकुम सलाम, अभी आपने बात की है, ज़िया अंजुम साहब हमारे बहुत प्यारे आदमी, हमारे बहुत भाई है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह उनकी बात, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। हम तो बहुत दुआएं करते हैं उनके लिए, और उनके बाद भी हुई थी एक दफ़ा उनके मोबाइल पे भी, अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत याद करे और तंदुरुस्त हो। हम देखिए जी, हम सबको सुनते हैं, सबसे मोहब्बत प्यार जितने भी आप जी है ना, सब के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए हम ज्यादा करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे।
1: इलाही आमीन, इलाही आमीन, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और आप तमाम सुनने वालों से भी गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं का ख़ास कर ख़ास हिस्सा रखिएगा, आप लाजमी तौर पर उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे, और वो दोबारा से उसी तरह हमारे साथ मौजूद हों और उसी तरह से प्रोग्राम करें। और मैं आपसे जो बात पूछ रही हूँ कि किस चीज़ के बगैर ज़िंदा रहना जो है वो आपके लिए मुश्किल है, ये बताइएगा। अभी किसी ने मुझे कहा कि एक सॉन्ग प्ले कर दें, किसने कहा, ठहरो मैं बताती हूँ आपको।
4: कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें।
1: इशातुल मोमिना ने हमें कहा कि प्ले द सॉन्ग, कितनी मखमूर है तुम्हारी आंखें। मेरी आंखें

कमलनाथ कहती हैं जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे, आमीन इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाहु अकबर, ये वक्त भी आना था मैंने कॉल अटेंड किया वो कहती होल्ड करे ना क्या करे ऐसे

0: दिल का सरू। रमजान गुज्जर बहुत शुक्रिया। जीरो फोर टू ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो वन वन। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: खान बाबा कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक हूँ। क्या हाल चाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या कहिएगा?
1: बात यह, मैं तो बाहर भी हूँ, ट्रांसमिशन नहीं आ रही है। आप टॉपिक क्या है?
0: वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। किस चीज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता इंसान?
1: अच्छा, किस चीज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता? हवा।
0: हवा के बगैर?
1: ऑक्सीजन।
0: ऑक्सीजन के बगैर? अच्छी बात।
1: यस,
0: बहुत शुक्रिया खान बाबा, थैंक यू सो मच।
1: अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारी दुआएं आपके साथ।
0: इलाही आमीन।

0: आंखें।
1: 04211100101 अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ कहाँ से?
2: हेलो
1: जी, कौन हमारे साथ कहाँ से?
2: लाहौर से अरुमा बात कर रही हूँ।
1: अरुमा कैसी हैं आप? अच्छा नाम है, क्या मतलब है आपके नाम का?
2: मेरे नाम का मतलब चमेली का फूल।
1: वेरी गुड, थोड़ा ऊंचा बोलेंगी?
2: हाँ?
1: चमेली के फूल, थोड़ा सा ऊंचा बोलो
2: जी।
1: क्या कहिएगा?
2: आप सुनाएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहिएगा? चमेली का फूल गुम हो गया, एक फूल मोती एदा मार के जगा सोनी है, बाजार वकीन दियाँ छुरियाँ, इश्के दियाँ चोटा बुरियाँ, एक फूल मोती एदा मार के जगा सोनी। राजकुमार शर्मा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी प्यारी आर्चेबाजी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज हमने बात की कि आपने मुझे बताना है हर्बलिस्ट सैफुल। ओके ओके ओके ओके, लाइफ पे कम आती हूँ ना, मुझे पता नहीं है कि सिर्फ जो देख रहे हैं ना उनका नाम नहीं लेना। जिन्होंने मैसेज किया उनका नाम लेना। 04211100101 जी, अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम
1: जी।
3: सईद आलम बात कर रहा हूँ, मक्खनपुरा शादबाग।
1: मक्खनपुरा, यहाँ मक्खन बोल बहुत बिकता है।
3: यहाँ पे जो है ना छप्पड़ी छप्पड़ होते थे।
1: ओ खैर, तो फिर इसको छप्पड़पुरा, इसको छप्पड़पुरा कहना चाहिए, मक्खनपुरा क्यों कहते हैं?
3: नहीं, यहाँ गुज्जर मशहूर थे ना यहाँ के।
1: अच्छा,
3: उस वजह से
1: गाय भैंसे ज्यादा होती, तबेले ज्यादा होते थे।
3: जी।
1: अच्छा
3: अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम जो है ना कॉल किया अभी।
1: बहुत शुक्रिया जी आपका, जल्दी जल्दी मुझे ये बताएं, वेलकम करते हैं आपको। आप ये बताएं, ओके ओके ओके, किस चीज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता ना इंसान? ये
3: आप समझ जा रहे हैं, ब्लाइंड हूँ, इसके बगैर कहाँ जिंदगी है।
1: अल्लाह ताला आपको,
3: लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह की जात का के लाखों में से एक के रिस्क हलाल कमा रहा हूँ और अपने भी जिंदगी को जी रहा हूँ और अपनी बीवी को भी।
1: बहुत शुक्रिया आपका, आप दोबारा जरूर आइएगा, हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला
3: सबको अपने
1: इलाही आमीन, इलाही आमीन। तो जनाब बात यहाँ पे क्या हो रही थी, बात हो रही थी कि किस चीज़ के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। देखें, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। ये चीज़ जब हम समझ जाएंगे तब चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। और इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में किसी एक चीज़ के बगैर कहें ना कि मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो आप ज़िंदा रहते भी हैं, आप ज़िंदगी गुजारते भी हैं। हाँ, ज़िंदगी गुजारने का थोड़ा सा एक नौयत चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन ज़िंदा तो बहरहाल रहते हैं। जितना वक्त गुजारें, अच्छा गुजारें, अपने अपनों के साथ गुजारें, उन लोगों के साथ लाजमी तौर पे वक्त गुजारें, उन लोगों को कभी भी कमी फील ना होने दें जिनको आपके साथ की ज़रूरत है, उन लोगों से कभी दूर ना जाएं, किसी का दिल करें। बाज़ दफ़ा कोई एक इंसान आपके साथ बहुत लगाव रखे हुए होता है और आपकी जो आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है, उसकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं खामोश कर देता है। उन रिश्तों के लिए ज़िंदा जिनके लिए हम रहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे बहुत ही करीबी रिश्ते हैं, क्लोज रिश्ते हैं, उनके लिए जिए भी, उनको जीने भी दें, अपने वालिदैन का साथ इंजॉय करें भरपूर तरीके से। ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये हमारे पास ही रह जाने हैं, रिश्ते जो निकल जाने हैं वो वापस नहीं आने। जितना टाइम हो सके उन रिश्तों के साथ वक्त गुजारें। और एंड पे यही कहूँगी, ये सांस है। राजकुमार शर्मा बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। जाते हुए यही कहूँगी कि सिर्फ ये एक सांस है हमारी, इस सांस के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। आपकी जिंदगी का की कहानी उस टाइम पे खत्म हो जाती है जिस टाइम पे आपकी सांस रुक जाती है, आपकी सांसें खत्म हो जाती हैं। आपकी मौत एक बहुत ही गैर मुतवक्के दिन पे होती है। वैसे ही सूरज निकलता है, वैसे ही हवा चलती है, वैसे ही लोग अपने कामों में महव होते हैं, वैसे ही लोग जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सूरज निकलना बंद नहीं होता, शाम होना बंद नहीं होती, दोपहर होना बंद नहीं होती, उस दिन भी रात होगी, लेकिन आप नहीं होंगे। आपकी जिंदगी की कहानी वहां पे खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी उन सांसों की कदर करें। वो जो मोहलत आपको मिलती है ना, उस मोहलत का फायदा उठाएं अच्छे काम करके, और दूसरों की दिल आजारी ना करें। बाकी सब कुछ यहाँ रह जाना है, बाकी सब कुछ सब चीजों के बगैर चलना है। इसलिए जब तक आप हैं अच्छे से रहें, अपनी मौजूदगी को यकीनी और हमेशा और देरपा बनाएं कि आपकी सांसें रुक जाएं, आपकी मौजूदगी वाके रहे। मुझे इजाजत दीजिएगा, जिंदगी ने वफा की तो दोबारा आपसे मुलाकात जरूर होगी। तो क्या कहते हैं, चलो खैर रहने दो। आप तमाम को बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने मैसेजेस किए, जिन्होंने कॉल किए, जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया। दोबारा आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासिये आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें।
2: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे से आम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
3: 101 FM।
4: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
5: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
2: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
6: This is FM 101.1
7: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
9: सुनते रहिए FM 101. 101.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं बच्चे बूढ़े खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें रेडियो टीवी अखबारात फोन एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें हिफाजत सिर्फ एहतियात में
2: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी मोटरसाइकिल चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख बमा महीना और साल चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो याद रखें रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ
3: 101 FM
4: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है तसव्वुर करें और गिनते जाएं दिन हफ्ते महीने साल हम कितना पानी जाया कर रहे हैं नल बंद करें पाइपों की मरम्मत करें पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी FM 101 इस्लामाबाद पानी बचाएं पाकिस्तान बचाएं
5: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें दीवारों छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبا یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
2: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات سپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جالسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
6: دس از FM 101.1
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ FM ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو FM 101.1۔
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर
1: बिग रेडियो बिग स्टाइल FM 101।

Big radio, big style. Please, FM 101.

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: बिग रेडियो बिग स्टाइल FM 101 Big Radio, Big Style. Please, FM 101.

वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी रिलीफ स्कीम के तहत रियायती पेट्रोल हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहां रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा, जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे।

0: Big radio, big style.
1: Please,
0: FM 101.

0: ਜਿਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਉਹ ਕਦੀ ਥੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਚ ਮਿਹਨਤ ਰਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ।
1: Big radio, big style.
2: Please, please. You can message me. 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। आवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से आवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
4: From analog roots to digital perfection. 28 years of pure sound, local stories, and non-stop music. FM 101.
5: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई मुमालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीरे आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीरे आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
6: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
7: मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोहर वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
5: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से। पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
8: दिस इज FM 101।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
9: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
10: तहत रियायती पेट्रोल हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका, अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहां रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा, जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे।
11: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून

0: वज़ीर-ए-आज़म खुसूसी रिलीफ स्कीम के तहत रियायती पेट्रोल हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका अपने मोबाइल मैसेज में REG स्पेस शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस आपकी गाड़ी जहां रजिस्टर्ड है उस सूबे का पहला हर्फ स्पेस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखकर 9771 पर भेज दें। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद फ्यूल पंप जाने से पहले TOK लिखकर 9771 पर भेज दें, जिस पर आपको टोकन नंबर मिलेगा जिसे पंप पर दिखाकर आप सस्ता पेट्रोल हासिल कर सकेंगे।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ, रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: क्या कह रहे थे तुम, एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर, एक दिन एक घंटा

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ, रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
2: सुनते रहिए FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ, रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है। 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

042-377-2710 यानी 042-377-2710।

0: और फिर हम यहाँ तक आ गए।
1: वाह वाह वाह।
0: और आज जो आपने हमारे साथ
1: वारदात डाली है
0: किया है ये
1: ये बड़ी हसीन वारदात
0: ये है। तो वो है कि एक तुम ही हमारे ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता।
1: अच्छा सर, आप चूंकि रेडियो के बंदे हैं, आपकी इब्तदाई दर्श का जो रेडियो है, बहुत से लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, रेडियो कितना इंसान को पॉलिश करता है, उसके तलफ़ुज़ को, उसकी अदायगी को, उसके बोलने के अंदाज़ को, उसके अंदर के जो आर्टिस्ट है उसको?
0: अंदाज़ा लगाने वाले इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो शायद वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितना पॉलिश करता है रेडियो। सो जो नशिस्त व बर्खास्त है किसी लफ्ज़ की, उसका जो तलफ़ुज़ है, उसका जो सौती आहंग है, उसके लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, रियाजत करनी पड़ती है। और मैंने पहले कहा कि आपको अगर कोई राहबर, कोई रहनुमा मिल जाए तो फिर आसान हो जाती हैं चीज़ें, वरना आप घूमते रहते हैं। मैं इस वक्त ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा
1: जी जी ज़रूर
0: उन असातिज़ा का जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में, आज मैं जो भी हूँ और आगे भी जो बनूँगा, जो रहूँगा, वो अल्लाह ताला जानता है। सबसे पहले तो मैं अपने वालिद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी आबियारी की, मुझे ऐसे सिखाया जैसे सिखाने का हक होता है। तो उसमें मेरी वालिदा की भी रियाजत शामिल है कि उन्होंने मुझे तैयार करके भेजना घर से, और फिर मैं तकारीर के मुकाबले किया करता था, फिर जीता करता था। तो पहली दरसगाह मुझे घर से मिली, माँ बाप की तरफ से मिली। और दूसरा, जब रेडियो पे मैं आ गया तो यहाँ मेरी जो नशिस्त थी वो यहाँ के जो जय्यद लोग थे उनके साथ थी। उनकी एक मिसाल मरहूम शुजात हाशमी साहब,
1: अरे वाह अरे वाह,
0: और हम हमीद साबरी साहब यहाँ हमारे रेडियो पे हुआ करते थे, लाइब्रेरियन थे वो, एहसान दानिश साहब के वो शागिर्द थे। मैं और शुजात हाशमी साहब, हम इकट्ठे हमीद साबरी साहब से इस्लाह लिया करते थे।
1: अरे वाह अरे वाह, क्या बात है।
0: तो हम दोनों ही होते वहाँ मौजूद। फिर मुझे उनके बाद जो उस्ताद मैसर आए, सैयद खालिद वक़ार साहब,
1: अरे वाह क्या खूबसूरत इंसान,
0: स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर। सो मैं घंटों उनकी सोहबत में रहा करता था, और मुझे उनसे वो फैज़ मिला कि आज वो फैज़ आपके सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लोग मैसर आए जिन्होंने मेरी तरबियत की। मैं हमेशा से उनका शुक्रगुजार था, और इंशाअल्लाह अलअज़ीम
1: क्या बात रहूंगा। क्या बात है, वो है ना कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं झुक के मिला करते हैं, सुराही सरनगु हो के भरा करती है पैमाना। उस्मान राज की एक खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत मॉडेस्ट रहते हैं, आजिज रहते हैं, और अपने उस्तादों को याद रखते हैं, और फल हमेशा उसी को लगता है कि जो पेड़ झुका हुआ होता है, और वैसे भी पेड़ झुके ही होते हैं फल वाले। तो माशाल्लाह ये आपका खास है जी, आप उस्तादों को याद रखते हैं, और जो आपकी आबियारी में, अच्छा एक चीज़ मैं आपकी ज़िंदगी में जो देखता हूँ, आपका आपके वालिद साहब के साथ जो कनेक्शन है ना माशाल्लाह, वो बड़े कम लोगों में मैंने देखा है। हर बंदा अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन आपका जो अंदाज़ है ना वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। आपकी वीडियोस में, आपका एक्सप्रेशन में, मतलब उसका नज़र आता है कि आप अंदर से कुछ एक डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं, एक डिफरेंट आपकी एक उनके साथ एक्सप्रेशन होती है, मोहब्बत होती है। आई एम श्योर इसमें कमाल तो आपके वालिद साहब का तो है ही है, उन्हीं का है, लेकिन आप इतनी मोहब्बत कैसे कर लेते हैं?
0: अब आप मुझे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, मैं इसको कमाल नहीं समझता। मैं आपको कोई चीज़ दूं और मैं अपनी ही दी हुई चीज़ आपसे अगर वापस लूं, तो इसमें आपका क्या कमाल है?
1: अरे वाह अरे वाह।
0: तो अब मैं बोल नहीं सकूंगा। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की है कि मैं जो हूं, जो था और जो हूंगा, सब उसी बाप का है। मुझ में जो कुछ अच्छा है सब उसका है।
1: क्या बात है।
0: मेरा जितना चर्चा है सब उसका है। सो इसमें मुझे, और ये कोई मुबालगा आ रही नहीं है या

0: कोई इस तरह से नहीं है। मैं इस हवाले से खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हर किसी से कोई ना कोई काम, रब की शान यही है, वो किसी से भी कोई भी काम ले सकता है। तो मैं खुश नसीब ही इसको समझता हूँ कि अल्लाह तू तो किसी से भी काम ले लेता है, तो मैं चाहता हूँ वो जो किसी से लेना है ना वो मुझसे ले ले, वो किसी मैं बन जाऊँ, बस इतना सा एक काविश है, कोशिश है, बाकी कोई लालच नहीं है मुझे कि मैं जन्नत का तलबगार बनूं या मुझे कुछ ऐसा कोई मेरे जहन में कुछ ये नहीं है कि फलां चीज़ की वजह से मुझे ये करना है। जैसे मैं अपना आर्ट, अपना काम, अपनी जो भी है बिना किसी लालच के करता हूँ कि यार ये अल्लाह की दी हुई सलाहियत है, मुझे ये एजाज़ मिला है, मेरी बात अगर कोई सुन रहा है या मेरी बात सुन के कोई बदल रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो इसी तरह अपने पेरेंट्स के हवाले से, अपने माँ बाप के हवाले से मैं एक छोटी सी देखने सुनने वालों के लिए ये बात समझता हूँ, इस वक्त आ गई है तो लाइव प्रोग्राम की खूबसूरती ये होती है कि अल्लाह फिर आपको देता है बात करने के लिए।
1: बिल्कुल ऐसे।
0: वो ये है कि कल मेरे बाबा जान, मैं उन चूँकि हम उस प्रोसेस से गुजर रहे थे, गुसल करना था उन्होंने, तो जब हम पहुँचे वहाँ तो मैंने उनको नल के नीचे खड़ा किया, मैं अपने तसव्वुरात की दुनिया में था, पानी खोला तो वो पानी से थोड़ा पीछे हट रहे थे कि ठंडा है, अब 71 ईयर्स उनकी एज है। तो मैंने कहा अच्छा, वो शख्स जो कबड्डी का चैम्पियन है, जो रेस की दुनिया का मास्टर है, जो टीचर रिटायर्ड हैं, जिनके अंदर इतनी एनर्जी कि आप सोच नहीं सकते, वो बंदा ये कह रहा है कि
1: ठंडा है।
0: तो मैं पलट कर अपने माजी में गया, मैंने फिर अपने छोटे भाई को बुलाया, उसको उस तरह से बाबा की शफकत मैसर नहीं आ सकी, मैं चूँकि बड़ा था, मेरा ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजरा, तो मैंने उसको वो मंज़र दिखाया, मैंने कहा बात सुनो, एक वक्त था मैं छोटा सा था, मेरे बाबा मुझे नहलाते थे तो मैं पानी से डरता था कि पानी ठंडा है, तो वो ठंडे पानी से नहाते थे एथलीट और वो सारा। मैंने कहा ये देखो वक्त ने कैसा पलटा खाया है, तब वो मुझे कैसे नहलाते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे, मेरा दिल लुभाते थे और फिर मुझे नहलाते थे और मैं नहाता था, और फिर एक वक्त आता था कि मुझे भूल जाता था कि पानी ठंडा है। वो उनकी शफकत थी, उनकी मेहरबानी थी, आज वक्त ने ये पलटा खाया। तो हमें दुनिया में किसी ना किसी की नौकरी करनी है या नहीं करनी, अभी भी हम नौकरी ही कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैंने किसी की नौकरी तो करनी है, तो यार मैं अपने बाप का नौकर क्यों ना बन जाऊँ।
1: क्या बात है, क्या खूबसूरत नौकरी है, क्या खूबसूरत नौकरी, इससे बड़ी नौकरी कोई
0: तो
1: नहीं
0: है। मैं और क्या किसी की नौकरी मैंने करनी है,
1: क्या खूबसूरत नौकरी है।
0: क्योंकि मैंने जब से ये सुना है, पढ़ा है, देखा है कि माँ की रजा में भी शायद अल्लाह की रजा नहीं है, बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। तो जब से ये मेरे सामने आया है तो मुझे पता चल गया कि ये तो सीधा सा रास्ता है भाई, बस इसके ऊपर चलते चले जाएं।
1: अच्छा मुझे बताइए उस्मान, ये आपके अंदर ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो मोहब्बत है, ये जो बाप के लिए ख़ास शफकत है, हर बंदा अपने माँ बाप से, पेरेंट से प्यार करता है, हर बच्चे की दिल में मोहब्बत होती है, लेकिन कुछ लोग थोड़े से एक्सट्रीम होते हैं, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, ये अता है कि ये बस मेहरबानी है, बस होगी कनेक्टिविटी।
0: सर ये अता ही है ना, इंसान के बस में तो नहीं है, इंसान मैं अपना अपना फ़लसफ़ा है, अग्री करना ना करना इट इज़ अप टू यू, बट पॉइंट इज़ जो मुझे समझ आई इस छोटी सी उम्र में वो यही है कि बल्कि एक बात आई गई वो भी कर दें कि मुझे देखो न देखो मैं नहीं हूँ, किसी का आईना है मैं नहीं हूँ, तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूँ, वो मुझ में बोलता है
1: मैं नहीं
0: हूँ। तो ये पता नहीं ये क्या है, बहरहाल ये कुछ है तो ये अताए रबी,
1: ये अताए रबी है, ये मेहरबानी है, ये करम है। और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन पे ये करम होता है। कॉल ले लें आपकी इजाज़त हो
0: सर प्लीज़।
1: काफ़ी देर से कॉल आ रही थी, मैंने कहा चलें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, खामोश कॉल। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि रेडियो से सफ़र चलता है फिर ड्रामों की जानिब कि थिएटर आता है पहले?
0: रेडियो से हम जाते हैं टेलीविज़न पे।
1: ठीक है, टेलीविज़न जो है उसमें एंट्री कैसे होती है? पहला ड्रामा वो दिन याद है? हाँ, कौन था,
0: क्यों नहीं,
1: कैसे हुआ?
0: आज मैं उस दिन का जिक्र कर रहा था, बल्कि पाकिस्तान टेलीविज़न पे अभी 4-5 घंटे पहले जब मैं वहाँ पे था तो जो वहाँ पे आजकल हेड हैं वहाँ के जीएम साहब, हमारे बड़े प्यारे भाई भी हैं और उस्ताद दोस्त भी हैं और कदरदान भी हैं कैसर शरीफ साहब, और वो अगर किसी के अंदर कोई आर्ट छुपा हुआ है तो वो बखूबी जानते हैं कि इसको बाहर कैसे ला सकते हैं। तो मैं आज भी उनसे जिक्र कर रहा था अपने पहले प्ले का, तो मेरे उस दौर में पाकिस्तान टेलीविज़न पे मैं जब गया तो मुझे जो पहली ऑफ़र मिली उसका नाम था कमाल की ईद।
1: अच्छा,
0: तो वो जो कमाल था वो अल्लाह का ही वैसे कमाल था क्योंकि लिखने वाले ने भी बड़ा खूबसूरत लिखा, तो वो कमाल की ईद में आई वॉज प्लेइंग एज कमाल।
1: अच्छा,
0: और वो हीरो था उस फिल्म का और कवि खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो मेरे साथ थे। ज़ुल्क़रनैन हैदर साहब थे, सोफिया मिर्ज़ा थी उसमें जो मेरी हीरोइन का रोल कर रही थी, इफ्तिखार ठाकुर साहब थे उसके अंदर, ऐसे बहुत से लोग थे, फ़हीम शाह साहब थे जो उसके डायरेक्टर थे। इस तरह से टेलीविज़न में मेरी एंट्री हुई।
1: वेरी गुड।
0: और फिर वो दिन और आज का दिन फिर ऐसे चले। फिर हम टेलीविज़न से मैंने स्विच किया फ़ौरन आफ्टर दैट फिल्म, टेली फिल्म थी, आई वेंट टू थिएटर।
1: अच्छा,
0: सो वो भी मेरा एक दोस्त मुझे ले गया इसी तरह से, जैसे आप मुझसे आज बहाने बहाने से सब कुछ निकलवा रहे हैं माशाल्लाह।
1: अच्छा मुझे बताएं कि अब टेलीविज़न के एक्टर में और थिएटर के एक्टर में क्या फ़र्क है?
0: बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। फ़र्क एक्सप्रेशंस का है, बॉडी लैंग्वेज का है, सुर का फ़र्क है।
1: ठीक,
0: जो बेसिक बुनियादी तौर पे जो फ़र्क होता है वही होता है। थिएटर है वो एक तो आपकी आवाज़ का मीडियम तो है।
1: ठीक,
0: वो थोड़ा लाउड मीडियम है।
1: ठीक,
0: थोड़ा सा लार्जर देन फिल्म टाइप एक चीज़ आ जाती है उसमें, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपको सपोर्ट करती है। वो जो आखिरी कॉर्नर पे कोई शख्स तशरीफ़ फरमा है वहाँ तक आपने अपनी बात पहुँचानी है। इसी तरह भी रेडियो है, मैं बिल्कुल कितना कम बोल रहा हूँ, कितने धीमे सुरों में बोल रहा हूँ तो मेरी ऑडियंस तक मेरी आवाज़ जा रही है, यहाँ मुझे लाउड बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। टेलीविज़न भी यही मीडियम है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: थिएटर है फुल बॉडी मीडियम। टेलीविज़न में मार्जिनाइज हो जाती हैं चीज़ें, जब मास्टर शॉट आता है आपकी बॉडी सारी नज़र आ रही है, उस वक्त आप पूरी बॉडी के साथ एक्ट आउट कर रहे होते हैं, और जब आप ये आ जाते हैं क्लोज़अप पे आ जाते हैं, एक्सट्रीम क्लोज़अप पे आ जाते हैं, बाकी बॉडी भी आपकी वर्क तो कर रही होती है लेकिन उस तरह से नज़र नहीं आ रही होती।
1: ठीक,
0: तो फिर आप इस हिस्से को यूटिलाइज़ करते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, आपकी आँख, आपके कान, आपकी नाक, आपका त्यूरी चढ़ाना, आपका आँख यहाँ से आँख उठा के यहाँ लेके जाना, वो फिर हर चीज़ मीनिंगफुल हो जाती है। फिर आप बहुत इमोशनल प्ले कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, डायलॉग नहीं भी है, आपकी खामोशी भी आवाज़ बनी होती है। तो थिएटर में ये चीज़ें थोड़ी लाउड रख के आपको करनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन थिएटर एंड टेलीविज़न।
1: अच्छा, थिएटर में मार्जिन आपके पास नहीं ज़्यादा होता ना, जिसे कहते हैं गलती की गुंजाइश नहीं होती,
0: निश्ता
1: है ना, और आपने परफॉर्म करना है, जैसा आप एक्सप्रेशंस की बात करें, लाउड आपने बात करनी है, आपने आखिरी बंदे तक बात पहुंचानी है, तो प्रैक्टिस कितनी आप लोग करते हैं एक थिएटर को करने से पहले, और फिर भी गलती का कहीं ना कहीं तो हो ही जाता ना कुछ ना कुछ तो।
0: सर वो तो इंसान की बुनियादी गलती है, बाकी बातें तो बाद में हैं। उसमें ये है कि हम कुछ ड्रामे होते हैं जो बड़े होते हैं, उसमें हम को 15-20 मिनट की अपना 20 दिन की रिहर्सल्स करते हैं, कुछ होते हैं उनमें 10 दिन की रिहर्सल्स चाहिए, कुछ होते हैं उनमें महीना महीना भी रिहर्सल्स करनी पड़ती हैं।
1: ठीक है,
0: जैसे हमारा एक प्ले है, आई वर्क फॉर अजोका थिएटर। अजोका इज़ एन इंटरनेशनल ग्रुप जो हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके परफॉर्म करते हैं, तो हम बहुत क्लासिक काम कर रहे होते हैं। तो वो हमारा एक प्ले है मंटो, जो मंटो साहब की जिंदगी पर था। लकीली आई प्लेड एज मंटो उसमें।
1: अच्छा।
0: तो वो कोई मतलब 75 पेजेस का उसका स्क्रिप्ट है जिसमें से 65 मुझे परफॉर्म करने होते हैं।
1: ओह माय गॉडनेस।
0: तो कोई
1: सारा याद करना है,
0: 2.5 घंटे का प्ले है और आपने जबानी उसको याद करना है। देन ऑन स्टेज यू एंड द ऑडियंस, सो देर इज़ नो वन एल्स। सो वो जो अब अभी अता की बात भी आप कर रहे थे मुझसे, सो ये है कनेक्शन। जब हम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, अभी मैं और आप लाइव परफॉर्म कर रहे हैं, अभी किसी आपको भी नहीं पता आपने अगली लाइन क्या बोलनी है, तो कोई है ना जो आपको जो दे रहा है, बस मैं उससे प्यार करने वाला।
1: अरे वाह, अरे वाह, क्या कहने। अच्छा, वो बाज़ दफ़ा अब जिसने आपने बताया कि 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस है, 1.5 घंटे का स्क्रिप्ट है, 84 पेजेस, ऑलमोस्ट
0: 75 पेजेस, 2.5 घंटे, 2.3,
1: ओ माई गुडनेस,
0: 2.5।
1: अच्छा, इन केस आप अपनी लाइन भूल जाते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, सो दैट इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको रेडियो आपका लेके आता है, आपकी वो तमाम कनेक्टिविटी आ जाती है कि आप अपने बजस्त अपने अंदाज से कुछ वहाँ पे फिक्रा बोल देते हैं।
0: वेरी नाइस। ये है जो रेडियो तरबियत करता है। हम बाज़ोकात अदाकार तो बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे, लेकिन सम टाइम ये होता है कि कुछ लोगों में शायद वो हर चीज़ बराबर होती है हर इंसान में, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ लोगों में कम होती हैं, कुछ में वो ज़्यादा होती हैं। कुछ IQ ज़्यादा रखते हैं, कुछ कम रख रहे होते हैं, ये तकसीम है अल्लाह ताला की, इंसान का इसमें नहीं है। सो कुछ लोग होते हैं वो इम्प्रोवाइज करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, हम रेडियो जॉकी हैं, रेडियो के, तो ये एक वस्फ जो है अल्लाह ने दूसरे लोगों से हम में शायद ज़्यादा डाल दिया है, हमें बात से बात निकालने का हुनर दे दिया है, तो ये दिया तो उसी ने है।
1: बेशक बेशक।
0: तो फिर हमें, कुछ लोगों को हुनर तो होता है, लेकिन वो ये हुनर नहीं होता कि कौन सी बात कहाँ करनी है, रिलेट कैसे करनी है, अच्छा
1: ब्रिजिंग कैसे करनी
0: है, यस उसको कनेक्ट कैसे करना है। फिर एक होते हैं जैसे हम कबीले होते हैं, एक जैसी पहचान रखने वाले, एक कबीला है, ये एक कबीला है, इसी तरह लफ्ज़ों का भी एक कबीला होता है।
1: बेशक बेशक।
0: सो अगर आप इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं तो जो लफ्ज़ आपको भूला है या जो आपसे उमिट हो गया या रह गया है, उसी लेवल का, उसी का हम पल्ला, उसी का हम।
1: अरे वाह, कितनी बारीक बात आप कर रहे हैं ये।
0: सो
1: ये बहुत बड़ी बात है।
0: ठीक है,
1: आपने उस लेवल को भी मेंटेन करना है। यस,
0: आपने गुड को नाइस, नाइस को गुड से तो रिप्लेस कर दिया है, तो अब जो इसकी सुपरलेटिव फॉर्म है, स्टुपेंडस, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, व्हाट एवर द वर्ड इज, सो आपको उसके लेवल का चाहिए अगर आपको भूल गया है।
1: अरे वाह।
0: तो वहां गुड या नाइस नहीं चलेगा।
1: वाह वाह वाह, बिल्कुल।
0: वो कबील चाहिए। हाँ। अगर आप किसी के लिए कह रहे हैं वो बहुत वो शुजात का आलम बरदार है, तो फिर वहां पे आप शुजात का हम पल्ला लफ्ज चाहिए।
1: अरे वाह, अरे वाह,
0: वहाँ छोटा सा लफ्ज नहीं चलेगा,
1: नहीं चलेगा। अच्छा, स्टेज पे काम करते कौन सा ऐसा एक्टर जो आपको, जिसने आपको बड़ा इंस्पायर किया, जिसके साथ आपको काम करने का बड़ा मजा आया?
0: जिसके साथ काम करने का बड़ा मजा आया, वो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करने,
1: जिसके पास विट भी है, बरजस्ता फिक्रे भी हैं, जो बड़ा क्राउड पुलर भी आपको लगा यार बड़ा मज़ा आ रहा है इसके साथ काम करने का।
0: हाँ, उनमें से अभी मैं कुछ ऐसे लोग हैं, लाइक चूँकि हमारा थिएटर और तरह का है, उस तरह का मीडियम हमारे पास नहीं है, बट हमारे साथ काम करते हैं नसीम अब्बास साहब, मेरे सीनियर हैं, और उनके साथ काम करके मुझे इसलिए मज़ा आता है कि वो भी उसी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे होते हैं, वो भी उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं और हम दोनों डिस्कस करते हैं. लाइक ही इज़ अ वेरी वेरी सीनियर टू मी.
1: अच्छा.
0: बट वो मुझे जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं कि वो मान गए कि यार अता है तो फिर.
1: अरे वाह.
0: तस्लीम करना भी एक काम है, हम तस्लीम नहीं करते हैं. तो वो हम फिर डिस्कस करते हैं यूजली कि अच्छा आप ये, मैं यहाँ, आपने यहाँ छोड़ा सुर, मैंने यहाँ से पकड़ा. वो फिर इतनी एनर्जी मिलती है क्योंकि ये भी एक बांटना ही है. जब तक आपका, आपके एक्शन को मेरा रिएक्शन नहीं मिलेगा तो वो एक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा. मैं हमेशा से कहा करता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस और हमारी दाद अनफॉर्चुनेटली दूसरे के मुंह में होती है.
1: अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा.
0: एक सब सोचने पर अब आप देख लीजिए, क्योंकि आपने एक एक्शन किया है, मैंने उसका रिएक्शन ही नहीं दिया, तो आप भी ज़ीरो हो गए, मैं भी चला गया नीचे. तो आपके एक्शन को मेरे रिएक्शन ने सपोर्ट करना है, देन पीपल विल क्लैप फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल. सो इट्स टू वे ट्रैफिक.
1: तो उस्मान ने बताइए कि अच्छा अदाकार और एक बड़े अदाकार में क्या फ़र्क है?
0: उसके साथ अच्छा लगता है, उसके साथ बड़ा. दिस इज द डिफरेंस.
1: मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा अच्छा अदाकार है, और कहते यार बंदा बड़ा बड़ा अदाकार है.
0: अच्छे और बड़े अदाकार में मुझे थोड़ा सा फ़र्क मेरी नाकिस अक्ल के मुताबिक ये होता है कि बड़ा अदाकार शायद अपनी ज़िंदगी में भी बड़ा होता है, अपने ज़र्फ से भी बड़ा होता है, अपनी चीज़ों से भी बड़ा होता है. अच्छा अदाकार जो है वो उतनी ही एफर्ट पुट करता है जितनी उसे दे दी जाए. जैसे हम बाज़ औक़ात किसी को आप दे दें यार ये स्क्रिप्ट है तो आपने इसको ही बस करना है, तो अगर कुछ आपको खुद भी ऐड ऑन करना पड़े तो आप कर लें. सो वो शायद उस तरह से ऐड ऑन नहीं कर सकेगा. उसकी कोशिश ये होगी ये जो मुझे दे दिया गया है ना, बस मैं इसी को ही बहला फुसला के कर लूँ. ये एक अच्छा अदाकार है. तो बड़ा अदाकार जो है वो देखता है कि ये तो है, अब मैंने इसमें कैसे आना, ये तो एक चीज़ मुझे मिल गई, सो मैंने कैसे इसको डिपेक्ट करना है, मैंने कैसे बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ. तो वो फिर बड़ा अदाकार ज़रा उस जाविये से सोचता है.
1: बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, ड्रामा जो है, जाहिर बात है बहुत से बच्चे भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त जो देख भी रहे हैं, ड्रामा कितना मुश्किल है, एक्टिंग कितनी मुश्किल है, और एक्टिंग के लिए भी क्या उस्ताद की ज़रूरत है, क्या सीखने की ज़रूरत है बाकायदा तालीम हासिल करके? क्योंकि हम अपने पुराने लोगों को जब देखते हैं, उनकी एक्टिंग देखते हैं, बाकायदा तौर पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था पाकिस्तान में. अब तो खैर एकेडमी सब चीज़ें बन गई हैं. क्या अब बच्चों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो कैसे इस फील्ड में आए, कैसे अपने आप को बेहतर करें?
0: बच्चों से बेहतर तो कोई भी नहीं होता. और हमारा मुल्क तो ज़रखेज़ है इस हवाले से कि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, और वो सारा दिन एक्टिंग ही तो करते हैं.
1: नहीं, बोली एक्टिंग नहीं सर, जो डिजिटल मीडिया पे चल रही है प्रॉपर एक्टिंग.
0: अच्छा, उसके लिए ये है कि आप, ये तरबियत गाह है. जैसे मैं आज भी आपके साथ वीडियो पे ही हूँ ना, हालांकि मुझे नहीं आना चाहिए वैसे. मैं सोचूं कि यार अब तो मैं आगे चला गया, मैं ये बन गया, मुझे इसी हमेशा ज़रूरत है. इसी तरह टेलीविज़न है, उसके अपने रमूज़ व अवकाफ़ हैं, उसकी अपनी नशिस्त व बरख़ास्त हैं, थिएटर की अपनी है, फिल्म की अपनी है. सो मैंने इन चारों प्लेटफॉर्म्स को अपनाया है, इन चारों में काम किया है, फिर मुझे चारों का फ़र्क समझ आया है, इसलिए मैं इतनी बात करने के थोड़ा बहुत काबिल हुआ हूँ कि अच्छा यार मैं भी कोई अपनी राय पेश कर सकूँ. तो ये है कि आप अगर डायरेक्ट किसी भी मीडियम में चले जाते हैं तो फ्लॉज रह जाते हैं. अगर आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत खूबसूरत हैं टीवी स्क्रीन्स पे, तो आप आ जाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते उस तरह से, वॉइस क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं अगर होती तो ऑडियंस ज़रा कट ऑफ हो जाती है. अगर आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपकी शक्ल सूरत उस तरह से अच्छी नहीं आ रही, लोग फिर भी थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं. बॉडी लैंग्वेज सबके अपने अपने, हर चीज़ की एक तालीम है. हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखने वाले देख रहे हैं मुझे, तो आपको भी देख रहे हैं, हमारा माइक से एक डिस्टेंस है, एक तालीम ने हमें बताया है, हम ऐसे नहीं
1: डेफिनेटली
0: सो ये किसी ने बताया है ना, तो अगर टैलेंट होना अपनी जगह पे है, सलाहियत का होना, लेकिन उसको पॉलिश
1: करना बहुत बहुत ज़रूरी।
0: हमें गाड़ी चलाना तो आती है, लेकिन हमें रमूज़ो अकाफ सिखाए जाते हैं कि यहाँ पे इतनी स्पीड में चलानी है, यहाँ ज़रा तेज़ भी जा सकते हैं, यहाँ से वन वे रहना है, यहाँ से यू टर्न लेना है, सो हर चीज़ मीज़ान में
1: बहुत अच्छा बहुत
0: बेहतरीन लगती है।
1: अच्छा सर, पॉपुलैरिटी जो है ना आज के दौर में, जो डिजिटल एरा हम जिसमें ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी आसान हो गई है, ये फेम और फन जो है इसमें क्या फ़र्क, ख़त्म नहीं हो चुका हुआ अब? लोग फेम की खातिर फ़न को पीछे छोड़ दिया, बस फेम चाहिए, दिन रात फेम की रेस लगी हुई है।
0: तो वो जिनको ये चाहिए उनके लिए भी मेरे पास कुछ है, अगर वो नाराज़ ना हो तो।
1: जी जी जी,
0: शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। स्किल कभी रायगां नहीं जाती, फेम रायगां चला जाता है। इंस्टेंट कॉफी और इंस्टेंट फेम इंस्टेंट ही होता है, क्लास खत्म नहीं होती अगर आप लिटरेरी हैं, अगर आप क्लासिक हैं।
1: वाह वाह वाह, क्या प्यारी बात की है।
0: तो ये आप अपनी स्किल को सीखिए, अपनी स्किल पे काम कीजिए। हम जितने लोगों पे, जितनी गाड़ियां हम इस्तेमाल करते हैं, जितनी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, ये एक दिन में ईजाद नहीं हुई, एक दिन में नहीं बनी हुई, लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खर्च की हैं इन पे, फिर आज हम इन पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं। तो हम ये एक और
1: ये असल में नहीं, ये मेरा भी बड़ा दुख है इस मामले में कि ये जो शॉर्ट टर्म कॉन्टेंट जो जिसमें बच्चे पढ़ गए हैं, है तो शॉर्ट टर्म है, लेकिन एक तरफ हम जब देखते हैं कि उस्मान राज रेडियो टेलीविज़न थिएटर मेहनत कर रहा है दिन रात, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ आते हैं, पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक पूरी सफ़र नज़र आता है, चीज़ें नज़र आती हैं, उसके बाद जाके उस्मान राज बनता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी शॉर्ट टर्म एक्टिंग की थोड़ी सी, थोड़ा सा मुँह हिला दिया, लिपसिंग कर ली, वो जनाब वायरल हो गए, चीज़ें हो गए। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में हमारी, मेरी और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को समझाना कि यार ये कंटेंट नहीं है, कंटेंट ये जो मेरे सामने बैठा हुआ है इस टाइम, इसके पीछे कितना कष्ट है, कितनी मेहनत है, कितनी तपस्याएं है, क्या क्या कुछ नहीं है यार। मतलब आप इफ़ यू रिमेंबर योर टाइम, कहाँ से शुरू हुए, उस्मान राज अगर आज नज़र आ रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत कुछ है।
0: सर मैं तो सिर्फ ये बात जानता हूँ क्योंकि आजकल हम सब ब्रांड कॉन्शियस हैं और ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, सो अगर आप बड़ा ब्रांड बनना चाहते हैं तो कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, वरना आप रेडी पे भी लगे होते हैं। सो पहचानिए,
1: बिल्कुल ऐसे ही है, आपका आपका खुद को पहचानिए। फेवरेट एक्टर कौन है जिसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती
0: आप?
1: है सवाल बदलता हूँ, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्ट्रेस जिसकी एक्टिंग यार कमाल है पाकिस्तान में।
0: हर अच्छा काम करने वाला मेरा फेवरेट है, कोई मैं किसी नाम में नहीं, किसी पैराए में नहीं, किसी को भी वो है बस ख़त्म है, क्योंकि हम, हमारी ये जो चीज़ें हैं ना ये बदलती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये कांस्टेंट किसी शख्स का, किसी शख्सियत का हमारे अंदर रहना अब नामुमकिन से बात है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम पहले किसी एक को पसंद कर रहे होते हैं, फिर एक दूसरा बेहतरीन आता है, हम थोड़ी सी नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। सो जितने भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, लाइक मैं थोड़ी सी इस हवाले से, जैसे सवेरा नदीम है, सानिया सईद है, सो अब इसके साथ फरियाल गौहर हैं, इनको रखिए और इस उसमें देख दीजिए, इस इनके साथ मेल खाती हुई जो भी अदाकाराएं हैं, जो भी हैं, सो
1: मतलब
0: मुझे,
1: वो
0: सब, मुझे वो सब पसंद है, उन सब का काम पसंद है। इसी तरह मेल्स भी इस टाइम में जो आ रहे होते हैं, और जो आजकल के हमारे मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, मेरे बैचमेट जो मेरी उम्र में और इस तरह से सारे हैं, हर कोई, हर भूल है, اس کی اپنی خوشبو ہے.
1: کیا بات ہے.
0: میں کہوں کہ اس کی خوشبو نہیں اچھی کیونکہ مجھے نہیں پسند, ایسا نہیں ہو سکتا.
1: اچھا عثمان, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن دا نیم, لیکن ایسا نہیں لگتا سم ہو سم ویئر ڈرامہ انڈسٹری یا فلم انڈسٹری پہ جو وہ ہمارے جو سینئر جنہیں ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے, جن کو اب پروڈکشن میں ہی رہنا چاہیے, وہ بھی ہیروز آ رہے ہیں. تھوڑی ناانصافی نہیں ہے فلم اور ڈرامے کے ساتھ, ان کے اپنے ساتھ بھی. ویسے
0: ناانصافی بس اس طرح سے ہے کہ اصل میں نا اس کا خمیازہ ہم سبھی بھگت رہے ہیں. ہم کرسی خالی کرنے کے لیے تیار نہیں, حالانکہ اس کرسی کے آگے اس سے بڑی کرسی بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے.
1: بہت اچھی بات.
0: تو اگر ہم اس بات کو سمجھ ہی جائیں, ہم چپک جاتے ہیں. یار ہمارا گھر میں بھی تو رول شفٹ ہوتا ہے نا, ہم بچے ہوتے ہیں پھر ہم بڑے ہوتے ہیں, پہلے ہم اپنے ماما بابا کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں, پھر ہمارا کمرہ الگ کر دیا جاتا ہے, پھر وہاں ایک بیوی کی ہمارے پاس آ جاتا ہے, پھر ہمارے بچے ہوتے ہیں پھر ان کے کمرے الگ کر دیے جاتے ہیں. ایک ٹرانزیشن ہے, ایک ٹرانسفارمیشن ہے. سو یو ہیو ٹو فالو. اگر آپ ایک ہی چیز کو چپک جائیں گے کہ آپ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے, دیر از نو باؤنڈری فار این ایکٹر. پیور آرٹسٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, ہی کین بی اینی تھنگ اینی ٹائم اینی ویئر. اگر آپ کے اندر یہ سوئچنگ ہی نہیں ہے, سو واٹ آر یو ڈوئنگ.
1: بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کریکٹر, آپ نے بے شمار کریکٹرس کی ہیں ڈرامے تھیٹر, بیسٹ کریکٹر جو آپ کو بڑا دل کے قریب ہے, یار اس میں مجھے بڑا مزہ آیا, انجوائے کیا, اس میں عثمان راج نظر آیا.
0: وہ میں نے کیا, میری جو فلم آئی تھی ایک چھولے آسمان, وچ از اویلیبل آن یوٹیوب ناؤ, اگر سننے والے دیکھنے والے اس کو دیکھنا چاہیں سو وہ چیک کر سکتے ہیں اسے. دیٹ از ویری نیئر ٹو می.
1: اچھا,
0: ویری نیئر ٹو می. دیٹ از ایکچولی می. کچھ چیزیں ہیں جو اس کی ہیں. ریحان اس کا نام ہے, ابو ریحان البیرونی کو ٹریبیوٹ پیش کیا.
1: اچھا اچھا.
0: مطلب ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا پڑھی لکھی فلم, اور جس کا نام چھولے آسمان ہے. سو آئی نیور بلیو ان ہٹ اینڈ فلاپ. میرا کام نہیں ہے ہٹ اینڈ فلاپ, میرے اس میں نہیں آتا. میرے اس میں فیڈ ہے کہ کام, بس کام.
1: اچھا, کوئی ایسی ہیروئن ہے جس کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے, یار میں اس کے ساتھ ہیرو ہوں؟
0: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے.
1: نہیں, کسی ایک کا تو ہوگا.
0: مجھے کسی, میں ہیروئن کے اس شہر میں مبتلا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ, میں اس کے آرٹ میں مبتلا ہوتا ہوں.
1: چلیں آرٹ میں بتا دیں
0: تو اس کو بتا دوں گا.
1: ہمیں تو بتائیں نا, پتا چلے وہ کون ہے جس کے ساتھ عثمان راج ہیرو آنا تو
0: ارے کوئی بھی آ جائے یار, اس تک میں نے خاص امید نہیں کسی سے باندھی ہوتی. مجھے بس مجھے میری ایک نیچر میں یہ چیز شامل ہے, مجھے اپنے سے اچھا شخص دوسری طرف چاہیے ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے سے بہترین دوسری طرف ہو, تاکہ اس کی چمک مجھ پر بھی پڑ جائے, اس کی روشنی میں میں بھی منور ہو جاؤں. تو مجھے زیادہ
1: ایسا بھی ہوتا ہے جب ڈائیلاگس کی ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے, سامنے جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا ویک ہوتا ہے, تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ یار
0: میں اس کو کہتا ہوں پہلے جوس پی آؤ, تم کافی ویک ہو اور تمہیں ایک ویک ہو گیا.
1: اچھا, اور امان ہمیں اشارے کر رہے ہیں کہ بھائی 10 بج رہے ہیں, بس آپ کے جانے کا ٹائم ہو گیا.
0: اچھا
1: ہاں,
0: امان بڑا بے مربت ہے, اللہ ہمیں اپنی امان میں ہی رکھے.
1: امان کہنا ہے جاگتے رہنا, امان پہ مت رہنا.
0: مت رہنا
1: سر. اٹ واز آلویز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے اور بڑا سیکھنے کو ملتا ہے. یو آر اے انسپریشن آف اور ینگ جنریشن جو ایکٹنگ میں آنا چاہتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت انسان ہیں آپ, محبت والے انسان ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟
0: میسج کیا ہے, یہ تو میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے.
1: واہ واہ واہ.
0: بس یہی ہے کہ تمام دوست سننے والے, پیار کرنے والے, چاہنے والے, ایک گزارش ہی ہے, میسج نہیں ہے اس طرح سے. بس گزارش صرف اتنی ہے کہ نہ کریں, نہ کریں, نہ کریں, اور اگر کریں تو پھر ایسا کریں کہ پھر
1: کر گزر
0: گنجائش نہ باقی رہے. پھر اپنی تمام تر صلاحیت کو بروئے کار لا کے وہ کام کیجئے, تاکہ پھر کچھ کچھ کچھ پہچان بنا کر اس دنیا سے جائیں.
1: ارے واہ, کیا کیا, بہت خوب سر. تھینک یو سو مچ جی، بہت بہت شکریہ جی، ہم نے بھی چاہنی ہے آپ سے اجازت اسی اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ فرحان خان کو دیجیے گا اجازت، آج زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی، آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کے روز رات 10 سے 12۔ چل دینا اللہ نگہبان، اللہ ٹو آل۔

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने बरामदी अमल को आसान, तेज़तर और मज़ीद शफाफ बनाने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म की ईंधन सहूलत स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुस्तहक अफराद के लिए आसान और काबिल रसाई रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी गजाई तहफ़ुज़ और तहकीक के वफाकी वज़ीर ने शुगर मिल मालिकान को गन्ने के काश्तकारों को बरवक्त अदायगियाँ यकीनी बनाने की हिदायत की है। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने आइंदा 2 रोज के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई के तनाजुर में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब का इंतबाह जारी किया है।
1: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's music, and then there's magic. One Above FM 101.
5: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है ना, बात करनी ना तुझको सुनानी सोचो।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बरामदी अमल को आसान, तेज़तर और मज़ीद शफाफ बनाने की हिदायत की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म की ईंधन सहूलत स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल मुस्तहक अफराद के लिए आसान और काबिल रसाई रखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कौमी गज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के वफ़ाक़ी वज़ीर ने शुगर मिल मालिकान को गन्ने के काश्तकारों को बरवक्त अदायगियाँ यकीनी बनाने की हिदायत की है। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई के तनाजुर में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब का इंतबाह जारी किया है।
1: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए माहाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए माहाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ। रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें। पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें। टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो। याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है। अवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें। मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें। वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है, और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
1: On the main line from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: जनाब अली एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शान, आपके साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज। वक्त जाया किए बगैर चलते हैं कॉल्स की जानिब, देखते हैं कौन है हमारे साथ। लेकिन कॉल जो है वो आ रही है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में एक मुल्क है जापान। जापान में इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी तवील उम्र आबादी जो है वो जापान में। जापान की तारीख में पहली मरतबा 100 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 1,00,000 से तजावस कर गई है। इनका एक सूबा है, उसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा में जो है इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा तवील उम्र लोग जो हैं वो रहते हैं। एक बुक है इकिगाई, ये एक जापनीज लाइफ स्टाइल पे एक किताब है और ये किताब पढ़ने वाली किताब है। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। इसके अंदर बताया है कि अगर आप जो है इकिगाई का मतलब ये है कि लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। तो अगर इकिगाई आपको ये भी सिखाती है कि आप अगर 100 साल तक जीना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी आप में खसूसियात होनी चाहिए, तो उसमें एक जो ख़ास बात थी वो चलें बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान FM 101।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
1: अनीला फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं?
0: मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ गो हूँ जो जो जहाँ सुन रहा, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके लिए बहुत सी दुआएं।
0: आमीन आमीन। आप गुम हो गई हैं?
1: मैं गुम नहीं हो गई हूँ, शो नहीं आता था, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत मिस करती हूँ, इतना जबरदस्त आपका प्रोग्राम होता था।
0: इंटरनेट से सुना करें ना?
1: सॉरी,
0: इंटरनेट से सुना करें?
1: हाँ, इंटरनेट से ही ये जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसे इंटरनेट वैसे यूज नहीं करती इतना, लेकिन ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ आपके शो को, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं ये वाला स्टेप भी ले लूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे बताएं कि आपने कभी ये ट्राई की हो कि मैं खुद को बेचारा शो करके लोगों की तवज्जो हासिल कर लूं?
1: अच्छा, ये टॉपिक है?
0: हाँ।
1: ओ, क्योंकि यहाँ लाहौर में तो आ नहीं रहा ना। अच्छा, मतलब खुद को बेचारा शो करके तो लोगों की सिंपैथीज लेना, मतलब हमदर्दियां इकट्ठी करना।
0: हाँ।
1: नहीं ऐसे तो नहीं, अल्लाह रहम करे, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं फनकार, यू नो, इतने फनकार लोग हैं ना ऐसे, वो लोगों की हमदर्दियां ऐंठने के लिए कोई भी रूप धार लेते हैं। कोई भी बेचारगी जाहिर करनी शुरू कर देते हैं, मजलूमियत जाहिर करना शुरू कर देते हैं कई सारे मामलात में, जिसका असर ये होता है, जिसका मतलब नुकसान ये होता है कि जो दूसरे डिजर्विंग लोग होते हैं ना उनका हिस्सा खा जाता है।
0: ये आपने सबसे अच्छी बात की।
1: हाँ तो और क्या है, ये देखो ना, आप हम कईयों को मजलूम समझते रहते हैं, वो इतनी बेचारगी जाहिर करते हैं, बाद में पता चलता है कि उनके तो सारे नखरे वखरे टखरे पूरे होते रहते हैं, काहे काहे करते रहते हैं, उनके बहुत सारे हेल्पर भी मिल जाते हैं उनको, उनकी हर जगह से बहुत तरह से हेल्प हो रही होती है, मगर वो शो नहीं करते। मेरे साथ ये सीन हुआ, मैं कुछ लोग ऐसे, मैं मतलब तो वो शो ये करते हैं आके, वो फ्ला फ्ला ब्ला ब्ला, उसने मुझे कुछ नहीं, उसने मेरे कोई नहीं साथ देता हो, उसने है कीता, उसने ओ बाजी एक दफा पूछ दोबारा पूछा किसी, मतलब इतनी मजलूमियत और दूसरों के गिले, जिन्होंने एक दफा भी हेल्प की है ना, आप उनके मशकूर हो तो मशकूर नहीं होते, उल्टा उनके गिले शिकवे करने शुरू कर देते।
0: सही बात है। मुझे बताएं कि आपको कोई रेडियो पे ऐसा लिसनर मिला है?
1: यस यस, मैं जानती हूँ। तो मतलब वो भी ऐसे, हम तो यही समझे कि भी बहुत ज्यादा इनके मतलब डिजर्विंग है ये वो, लेकिन बाद में पता चलता है 8-10 लोगों से और भी हेल्प ली होती है और वो कर रहे होते हैं, मगर वो शो नहीं करते कि कहीं ये हमारी हेल्प ना बंद कर दे। और अल्लाह के बंदो, अगर आप लोगों की हेल्प हो रही है अगर 2-4 जगह से, तो आप कम से कम ये खुदा खौफी खाओ, एहसास करो कि आपकी हेल्प होगी मजबूरी में, कोई और डिजर्विंग भी होंगे, कोई और भी बेचारे ऐसे होंगे जिनको जरूरत है, उन्हें कोई भी नहीं पूछता होगा।
0: बिल्कुल ऐसा ही है।
1: मोस्टली ऐसे बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं ना सफेद पोश होते हैं, हमें पता होता है उनके हालात होंगे, लेकिन वो शो नहीं कर रहे।
0: लेकिन सफेद पोशी वाली तो खैर एक अलग वो है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि हमसे बात कर लें, हम ये हैं, ऐसा भी है।
1: हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं ना, उनको होता है कि बस उनकी सुन लो, उनके जो पता नहीं जिंदगी में कौन से जुल्म उनके साथ हो रहे हैं या कौन सी उनको जो है इग्नोर किया जा रहा है किसी चीज में, तो उनको पूछ लो, उनकी सुन लो।
0: अच्छा चले, आखिरी सवाल है आपसे। آخری سوال آپ سے کہ آپ کیسے پہچانتی ہیں کہ کون جو ہے وہ بیچارہ ہے کون نہیں ہے؟
1: بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نا آپ جب ملتے ہیں آتے جاتے ہیں یا سنتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ جسے کہتے ہیں نا کھلنا شروع ہو جاتی ہیں باتیں, چیزیں, راز, پھر آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کون کتنا ہے پانی میں, کتنا کس طرح کا ڈیزرونگ ہے, کتنا یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ اکثر ان کی باتوں, حرکتوں, چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے. وہ شروع میں نہیں ہمیں پتہ چلتا, بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا ڈسے بھی جاتے ہیں جب تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ اتنے مظلوم اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کہ یہ اپنے آپ کو شو کر رہے تھے اور ہم دیکھو کوکو کی طرح ان کو سمجھ رہے تھے کہ یہ بیچارے ایسے.
0: چلیں بہترین ہو گیا. اور علینا مجھے یہ بتائیں کہ بیٹی کیسی ہے؟
1: الحمدللہ بیٹی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے.
0: چلیں بہت اچھی بات ہے, آباد رہیں, خوش رہیں, بہت ساری دعائیں آپ کو.
1: بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. اور میں آن ایئر تھی نا؟
0: یس.
1: او مائی گاڈ, اچھا تو پھر میرے سننے والے بہن بھائی سب کو سرے بھائی سے, ملک اشتیاق صاحب, جو وہ انصاری صاحب, اور فریدہ بھی ابھی کینیڈا سے واپس آئیں گے تھوڑے دنوں میں, اور ان سب کے لیے, اور جتنے بھی آتے میں تو بھول چکی کہ کون کون سے لسنر آتے, لیکن ان کے لیے ذیشان بہت بہت ساری دعائیں سلام ان کو میری طرف سے, اور آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ
0: ویشز.
1: ہمارے شہزادے شہزادیاں ٹھیک ہیں؟
0: سب سیٹ الحمد للہ کرم مالک. کافی عرصے بعد جی لاہور سے ہماری لسنر, اور ہمیشہ آتی ہیں, اچھا ہی کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ایک چلتے ہیں اور نہیں, ایک نہیں چلتے, صبر میں دیکھ لوں پہلے, اگر کوئی پیغامات ہیں تو ان کو آن ایئر کرتے ہیں. کالز آ رہی ہیں لیکن کالز لیتے رہیں گے, کالز کہاں جا رہی ہیں. اتنی عزت نہیں کرنی چاہیے کسی کی کہ وہ آپ کو بھول جائے, سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے جی. تو مطلب کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ زیادہ عزت نہ دیا کرو, لوگ جو ہے نا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, تو اس لیے لمٹ پہ رکھو, عزت زیادہ نہ دو, سمجھ گئے؟ اینی وے جی, اور ہمارے پاس دیکھتا ہوں اگر کوئی ون ون چینل پاکستان پہ آپ کے کچھ پیغامات ہیں تو ان کو آن ایئر کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہیں ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا بولنا چاہتے ہیں. اینی وے جی, ایک منٹ کھل جاؤ. سدرا قریشی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ویرو. وعلیکم السلام, ویلکم. سنائے کیسے ہیں؟ گھر پہ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں, مزاج بخیر. پیرزادہ غلام مشتبہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, لمبی لمبی انہوں نے پوئٹری بھیجی ہے, بہت شکریہ جی. آباد رہیں, خوش رہیں, ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے. اور ہم چلتے ہیں ایک پشتو ٹریک کی جانب. ہمایوں خان کی آواز اچھا ہے. اتن اتن پاسی چول

0: अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका शान आपके साथ, ऑल द वे लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियो। कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, रेडियो पाकिस्तान एफएम 101।
1: वालेकुम सलाम,
0: कैसी हैं आप? ठीक
1: हैं?
0: मैं ठीक ठाक। कौन कहाँ से? ओ जबरदस्त, कैसी हैं आप? ठीक हैं? काफी सालों बाद आई हैं।
1: कह सकते हैं
0: 75 सालों बाद।
1: अभी भी हमारी गुड़िया की बर्थडे थी तो मैंने सोचा मैं हाजिर हो जाऊं।
0: बहुत शुक्रिया जी। और बर्थडे थी फ्राइडे को मेरी सबसे छोटी बेटी की।
1: मेरी प्यारी बेटी और उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और सारी गुड़िया जब आप बड़ी हो फिर आपके पापा।
0: हाँ बिल्कुल, अभी अभी बस रुक रुक के बोलती है और माशाल्लाह थोड़े थोड़े दांत भी निकल आए। हाँ थोड़ा थोड़ा बोलती। और बताएं आप कैसी हैं? ठीक है, मिजाज बखैर? और टॉपिक बात करते हैं, टॉपिक मजलूमियत के थ्रू जो है लोग तवज्जो हासिल करना चाहते हैं।
1: मुझे ये सबसे बुरा लगता है। आप पता है लोग अक्सर मेरे साथ भी ऐसे करते हैं और वो आप रीजन तो शायद आपको पता ही है। तो मेरे साथ कई लोग ऐसे करते थे। खैर मैं मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से ना फिर आपको किनारे करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्या फायदा भाई, तर्स खा के आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे हो या तर्स खा के आप किसी के साथ बात कर रहे हो? आप यकीन माने
0: बात नहीं
1: करता, बेशक ना करे तो खलूस हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया मतलब ड्रामे ठीक है वो बाकी, तो टिकटॉक पे मुझे शदीद बोर लगता है लेकिन
0: और आप जी जी जी मैं कह रहा हूँ आपके फेवरेट आपके फेवरेट आरजे जो है वो टिकटॉक यूज कर रहे हैं और आप कह रही हैं मुझे बोर लगता है।
1: अब मैं क्या करूं, मैं उनके से नहीं हूं लेकिन वो है बहुत अभी। मैं उनको कभी भी बुला सकती, वो मेरे दिल में रहते हैं, दुआओं में रहते हैं।
0: बस हमें भी थोड़ी सी जगह दीजिएगा दुआओं में।
1: अल्लाह ऐसे क्यों कहते हैं?
0: नहीं तो नहीं देंगी
1: आप अली भाई और एक और आगे ऐसे ही है जैसे अब हर इंसान की अपनी जगह होती है, सिर्फ हम लोग कहते हैं कि
0: सही बात है।
1: अफसोस आप मेरी अहम है, अहम है तो ही आपके बच्चे मुझे याद है ना भाई, क्यों आप ऐसी बात करते हैं?
0: नहीं नहीं मुझे बिल्कुल, मैंने ऐसे ही कहा है आपको। और आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं और अल्लाह आपको खुशियां दे, आपके नसीब अच्छे करे, आपको आबाद रखे, सेहतियाब रखे, आमीन।
1: वैसे आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे,
0: थैंक यू सो मच,
1: खुश रहे, मेरे भतीजियों से बहुत प्यार किया करे,
0: उनसे
1: और मेरे भतीजे से प्यार किया करे,
0: उनसे प्यार ही प्यार है।
1: और मालूम है आपने बहुत सारा प्यार करना है, ठीक है?
0: क्या है
1: छोटी बेटी को बहुत सारा प्यार करना है।
0: हाँ जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। और आप भी आती रहा करें, मैंने कहा आप भी आती रहा करें।
1: आती जाती रहा करूंगी सर्दियों के अलावा।
0: सर्दियां, हाँ सर्दियों में बस ना आए, ठंड है।
1: नहीं नहीं नहीं मैं उसे आपको 10 बार ना ठीक है
0: फिर से आ जाए। वो कह रही है
1: आप बता सकती, मैंने रात को ख्वाब में ये देखा है कि शुक्र है आपने मुझे याद कर दिया। मैंने ख्वाब में देखा कि मैम सदस्य मुझे कह रही थी कि मैं सदस्य कहूंगी, वो फिर दोबारा वापस आ गए।
0: क्या बता
1: शकील वाले, जब मेरे टीम की अब मेरी आंख खुली ना तो मैंने टीम किया एक बस के मुकाबले 35 मिनट तो शो थ्रू किया तो वो आज खुरम थे। मैंने कहा
0: हाँ उनको स्लॉट मिल गई है ना,
1: क्या है
0: स्लॉट खुरम को मिल गई है
1: जी, उनको मिल गई है। बस हमारी आज ही चली गई है, हमें अब किसी से कोई मतलब नहीं।
0: सही बात है, बेमतलब हो गई हैं आप।
1: वो सुनना, मैंने हमारे एक आदमी है ना, मेरे मतलब उनसे कॉन्टेक्ट करना, तो मैं उससे यही कह रही थी कि अब मेरे जो फेवरेट हो गए ना बाकी लोग, मुझे दिल ही नहीं पता मैं उन्हें ज्वाइन कर पाऊँ। हालांकि ये बहुत बुरी बात होती है, एक पर्सन चले गए तो बाकी सबको छोड़ देना। तो
0: सही बात।
1: वो कहते हैं कि ऐसे तो ठीक हो जाएगा सब, जैसे जैसे आप जिंदगी तंग आएंगे ना, तो आप पता है आपके पास बेस्ट ऑप्शन SNP है,
0: सही बात
1: फिर
0: है।
1: आप दोबारा अपने कोई
0: अपने अपने
1: भी
0: गम,
1: चैनल
0: अपने
1: आए।
0: गम
1: क्या
0: जो है वो यहाँ आके उंडेल दिया करें सारे।
1: चीज़
0: मैं कह रहा हूं अपने गमों को यहाँ आके उंडेल दें।
1: थी? ये तो है, लेकिन पता क्या, हर इंसान की शायद अपनी जगह है, और
0: सही बात,
1: वो कभी भी कोई भी
0: कोई ले
1: नहीं
0: नहीं
1: है
0: सकता। जी
1: ना।
0: जी जी जी बहुत शुक्रिया सविता
1: और
0: जारा, थैंक यू सो मच,
1: इंशाल्लाह सलामत रहे आप भी, और
0: बहुत शुक्रिया,
1: शुक्रिया भी होता। ठीक है, हम वापस देंगे।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
1: ओके,
0: सईदा सारा हमारे साथ ही, कॉल लंबी हो गई थी, फिर ये ना कोई कहे कि इतनी लंबी कॉल क्यों, बंदिया हो मुझे कहते हैं शान, नाम तो सुना होगा।

0: तो सलाउद्दीन नय्यर हैं, कहते हैं कि जो कुछ भी आप कहते हैं वो ठीक ही तो है, तस्कीन आरजू की तलब भीख ही तो है, और क्या है। यानी कि बस आपकी आरजू को तस्कीन मिल जाए तो बस वो भीख ही हुई ना, और क्या है। एनीवे जी, नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, रेडी पाकिस्तान FM 101। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्या नहीं ट्राई किया?
1: नहीं, वो आपसे नहीं बात कर रही थी,
0: अच्छा, और कौन, कहाँ से,
1: मैं बिस्मा लाहौर से। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है आपको। क्या
0: कैसे सुना? वहां तो ट्रांसमिशन नहीं आ रही है।
1: आ
0: मैंने सुना वहां ट्रांसमिशन नहीं आ रही है, आपने कैसे सुना?
1: रही है तो कभी सुनना है ना मैंने
0: अच्छा,
1: आपको।
0: यहाँ पे लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है, अजीब कंफ्यूजन है। खैर, कैसी हैं आप? ठीक हैं, मिजाज बखैर?
1: लाहौर में अब आपकी 11 बजे के बाद आपकी आवाज आई है।
0: अच्छा, और आप ठीक हैं?
1: हाँ जी, मैं ठीक हूँ। और टॉपिक पे मैं ये कहूंगी कि बहुत से लोग होते हैं जो मजलूम बनते हैं। अक्सर कुछ पेशेंट्स भी आते हैं और वो गरीब होते ही नहीं है, इतने बेचारे होते नहीं, पर वो भंडरे होते हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे हालात बहुत खराब हैं, ये वो रोना ही शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ।
0: तो आपको ये मतलब पेशेंट आपने कहा, तो आप क्या मेडिकल फील्ड में,
1: जी
0: आप मेडिकल फील्ड में हैं? आपने कहा पेशेंट,
1: हाँ जी, मैं
0: क्या करती हैं?
1: DHMS में क्लिनिक जाती हूँ, तो वहां पे अक्सर ऐसे पेशेंट्स
0: अच्छा
1: आते
0: अच्छा
1: हैं
0: तो आप
1: जो वाकई मजलूम होते हैं। उनका पता चल जाता है, उनकी ड्रेसिंग से, उनके हुलिये से पता चल जाता है कि बेचारे हैं,
0: या
1: ठीक
0: नहीं?
1: है। और कई लोग बेचारे भलरे होते हैं।
0: ठीक है, चलें, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं, लाहौर का मौसम कैसा?
1: लाहौर का मौसम तो अभी अच्छा है। थोड़ी देर पहले मतलब मगरिब टाइम ना बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी सी। अभी भी ठीक है, अच्छा है। रात के टाइम अब अच्छा हो जाता है, बीच में हवा रुक भी जाती है, फिर हबस सी हो जाती है, और जब चलती है ठंडी हवा तो फिर अच्छा लगता है।
0: हब्स हो जाती है। अच्छा, चलें
1: हाँ जी,
0: ठीक है।
1: और इस्लामाबाद का मौसम कैसा है?
0: इस्लामाबाद का जबरदस्त जी, खूबसूरत मौसम, हवाएं चल रही हैं ठंडी, और मज़ा आ रहा है, रोड बड़ी साफ
1: अच्छा,
0: सुथरी
1: आपकी
0: है।
1: क्या टाइम है? आपकी कौन से दिन और कौन
0: मैं
1: से
0: मंगल को,
1: को मतलब टाइम
0: मंगल
1: को आप करते हो शो?
0: मंगल को 10 से 12।
1: मंगल को 10 से 12, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ही ऐसे मैंने सुना है आपको, तो
0: बहुत शुक्रिया,
1: फर्स्ट टाइम ही बात हो रही है आपसे।
0: थैंक यू सो मच। आबाद रहें, खुश रहें,
1: ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज। जनाब लाहौर से, हाय, तकते हुए हर शय को बहुत गौर से गुजरे। क्या कहा? तकते हुए हर शय को बहुत गौर से गुजरे, हम बात तेरे जब कभी लाहौर से गुजरे।

तो शायर कहता है कि लड़कपन की ये बातें हैं मेरी बीती हुई यादें, मुझे लहाम होता था मेरा वजदान मुझसे बात करता था, ये छठी हिज जो होती है मुझे अक्सर बताती थी तुम्हारे ख्वाब ऊंचे हैं, तुम्हारा नाम भी अजदाद ने जीशान रखा है, जरा सा सब्र कर जाओ जो चाहोगे वो पाओगे, ये देखो वो रही मंजिल, तुम्हें किस बात का डर है, कदम अपने जमा रखो बस हिम्मत हौसला रखो, जरा सा सब्र कर जाओ सिकंदर बन ही जाओगे। अब अक्सर बेख्याली में वो बीते दिन मुझे जब याद आते हैं तो ये भी याद आता है, मेरा इल्हाम और वजदान और छठी हिस मुझे जो कुछ बताते थे कसम से सच बताते थे। तो हम बात कर रहे हैं जी इस वक्त कि आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं और उनके पास जब कुछ नहीं बचता तो वो सिर्फ एक ही हरबा इस्तेमाल करते हैं, वो है मजलूमियत, बेचारगी, और वो बेचारगी से ही लोगों को ट्रैप करते हैं, उनकी तवज्जो हासिल करते हैं। और मैं ये हूँ, मेरे साथ वो मसला है, और इसके बाद क्या होता है फिर बंदा जो है, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कॉल आई है, एक खातून थी तो उन्होंने भी यही एक टैक्टिक्स खेलने की कोशिश की, हालांकि मैंने टॉपिक भी रखा है फिर भी यही कर रही थी। तो सवाल ये है कि आप क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसकी हर कहानी में कसूरवार हमेशा दूसरे होते हैं, और क्या मुसलसल हमदर्दी मिलने से इंसान अपनी गलती देखना छोड़ सकता है, आप कैसे पहचानते हैं कि कोई वाकई मजलूम है, बेचारा है, या सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहता है। ये जो सोशल मीडिया पे आजकल हम बैठते हैं और सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पे आके हम अपनी परेशानियाँ बयान करते हैं और आजकल कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा, कितारसिस कर रहे हैं, सिर्फ अटेंशन हम हासिल करना चाहते हैं। और आजकल एक नया वो जो आया है चैट जीपीटी या जो भी एआई टूल है, हम जो बातें लोगों से नहीं कह पाते, इवन हस्बैंड वाइफ से नहीं कह पा रहा, और वाइफ हस्बैंड से नहीं कह पा रही, बहन भाई से नहीं कह पा रही, पेरेंट्स जो है वो बच्चों से वो बात नहीं कह सकते, बच्चे पेरेंट्स से, तो वो बात हम किससे पूछ रहे हैं, हम रोबोट से पूछ रहे हैं, चैट जीपीटी से। अब चैट जीपीटी को सब कुछ पता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कभी उससे कोई ऐसा सवाल पर्सनल नौयत का पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ ये मेरी सीवी है, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किस इंडस्ट्री में मैं कहाँ अकोमोडेट हो सकता हूँ। ऑल दो जहाँ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन है, लेकिन हमारे बड़ों ने हमें ये बताया जो भी प्रोफेशनल गुरु थे कि आप चाहे जितनी भी अच्छी पोजीशन पे हों, अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए कहीं ना कहीं इंटरव्यू देते रहा कीजिए, इससे पता चलता रहता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको मजीद क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, चैट जीपीटी को हमने हर अपना पर्सनल मसला बता दिया है और वो चैट जीपीटी के पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा, और बस, और जिन्होंने पेड लिया हुआ है ना, पेड $20 कटते हैं पर मंथ, तो मैंने भी पेड लिया है, लेकिन मेरे पास और बड़े रिसर्च के पेपर लिखने होते हैं और बहुत कुछ आजकल इसी से ही हो रहा है, पूरे पूरे थीसिस भी इसी से बन जाते हैं। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने हर चीज़ तो उससे बता दी है, वो आपको कभी भी ब्लैकमेल करेगा, और जब वो आपको ब्लैकमेल करेगा ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी, मुंह खुल जाएगा, आप कहेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ, ये इसको कैसे पता चल गया, तो कैसे पता चला, आपने खुद बताया है, तो सब कुछ तो आप खुद बता रहे हैं उसको, आप हर चीज़ उससे पूछ रहे हैं, आप हर मसला उससे बयान कर रहे हैं, आपने ये बता दिया मेरे घर में कितने कमरे हैं, आपने ये बता दिया मेरा नाम क्या है, मेरी वाइफ का नाम क्या है, मेरे बच्चों का नाम, सब कुछ तो आपने बता दिया, आपके पास तो कुछ भी सेफ ही नहीं है। हो सकता है कि आपने ये भी बता दिया मेरा अकाउंट जो है फलां बैंक में है और उसका अकाउंट नंबर ये है और उसका कोड ये है, बस फिर तो आप गए बिल्कुल, और खुदा ना खास्ता कभी मोबाइल गुम गया, बस फिर आप बेगम हो जाएं, ज़िंदगी बड़ी दुश्वार है। तो इसलिए जो है सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो है वो छुपा के भी रखिए, हर चीज़ बताने वाली नहीं होती, ठीक है जी। तो ये है आज की स्टोरी और इस पे अमल कीजिए, कामयाब रहेंगे। लुबना कहती हैं, आप सब आरजी मेरी दुआओं में हैं, सलामत रहें, बहुत सी दुआएं, बहुत शुक्रिया जी, आप भी खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराती रहिए, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे।

0: आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल FM 101.
1: बिन तेरे क्या है जीना.
0: FM 101, the sound of new millennium.

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल।

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
2: आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल।

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101, The Sound of New Millennium.

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: आपका पसंदीदा म्यूजिकल चैनल।

FM 101, the sound of new millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium.

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

फिर एक रात उसके अंदर पहला चिराग जला, दुख को ताकत बना लेने का चिराग। और जुदाई को हम सफरी पर तैयार कर लेने वाला चिराग। चिराग जला और उसकी जात नूर से भर गई। उसे वो लोग भी नजर आने लग गए जो अपने अपने कीमती कपड़ों में अपने अपने नासूर छुपाए फिरते थे। उसे वो लोग भी नजर आने लग गए जो अपने अपने कच्चे मकानों में अपने अपने भरम छुपाए फिरते थे। चिराग जला और मोहब्बत बेदार हुई, और बेदार होके बुलंद हो गई, और बुलंद होके फैल गई हर तरफ हर सू। चिराग ही चिराग जल उठे, रोशनी ही रोशनी फैल गई। उसने सुना कोई कह रहा था, तुम ही तो मरकज थे, तुमसे टूटा और कायनात में बिखर गया। उसने फिर सुना, ये तुम्हारी मोहब्बत ही है जो आंखों में चांद और दिल में चेहरे और रूह में सुख की ख्वाहिश सजाए फिरता हूं। कोई उसके अपने अंदर ही से बोल रहा था, कोई बोल रहा था और वो समझ रहा था, बड़ी आसानी से समझ रहा था, क्योंकि अब वो लड़का नहीं रहा था, जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका था, उस दहलीज पे जहां सारी बातें ना भी समझ आए लेकिन कुछ ना कुछ जरूर समझ आ जाती हैं। वो समझ रहा था सर्दियों की धूप की तमाजत और गर्मियों की सहराई रात। लज्जत खेज हिद्दत और निशात खेज खुन की वो दहकती हुई रेत और सुन कर देती यखबस्तगी का आदि था। नए मौसम उसे नई कैफियतों से रूशनास करा गए। उसने अपनी रूह पर पड़ी हुई गर्द झाड़ी और पहली बार इर्द गिर्द को एक नई और मखसूस नजर से देखा। देती यखबस्तगी का आदि था। नए मौसम उसे नई कैफियतों से रूशनास करा गए। उसने अपनी रूह पर पड़ी हुई गर्द झाड़ी

सोच करके वो अपने अंदर कैसे झांके, ये सब कुछ है तो फिर पुराना सब कुछ कहां है? वो भी तो गया नहीं, वो भी तो खत्म नहीं हुआ, वो भी तो मौजूद ही है। एक खामोशी और एक शोर मचाती हुई खामोशी, एक सुकूत, एक बिलबिलाता हुआ सुकूत, एक सन्नाटा, एक वीरान सन्नाटा और धुंध, गहरी और पीली धुंध, जैसे किसी ने बहुत सारे खिजा रसीदा पत्तों को बारीक पीस के हवा में उड़ा दिया हो। और शराबी कहीं दूर से कुछ पढ़ पढ़ के फूंकती शराबी, बहुत दूर से बाजू लहरा लहरा के कुछ कहती शराबी, सर उठा उठा के आसमानों की तरफ तकती शराबी, शराबी और रूह के किसी खला में गुम होती हुई शराबी, शराबी और चराग, चराग और शराबी, वो हंस पड़ा फिर रो दिया, रोते रोते फिर हंस दिया। हवा ने कहा पागल, हवा ने उसे पागल कहा और वो लिखने बैठ गया। अगर ये पागलपन है तो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और हिकमत भी पागलपन है। फिर यूं ही हंसते रोते जाने कब नींद ने उसकी आंखों पे अपने लब रख दिए, वो सो गया, वो सो गया और एक नई बेदारी शुरू हो गई, ख्वाबों और सपनों की बेदारी। उसने देखा एक पहाड़ है और उसके दिल पे पड़ा है, एक सूरज है और उसकी आंखों पे धरा है, एक सहरा है और उसकी पेशानी पे जड़ा है, एक फासला है और उसके सीने में गड़ा है, एक दीवाना है, एक दीवाना है और उसके सामने खड़ा है और रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। उसने दीवाने के आंसू पूछना चाहे, उसकी उंगलियां पत्थर की हो गईं। उसने दीवाने को दिलासा देना चाहा, उसकी गोयाई जाती रही। उसने देखा वो दीवाना वो खुद है और किसी सलीब पे मसलूब हो चुका है और फिजा में मुअल्लिक है। उसके गिर्द लाखों लोग स्याह अलम उठाए एक दूसरे को दिलासे दे रहे हैं और सबके सब दीवाने हैं। फिर उसने हर दीवाने को गौर से देखा और चौंक गया, उनमें से हर एक के कपड़े मैले हैं और पांव गंदे और उनमें से हर एक की अपनी अपनी शराबी है, जो उजले लिबास वालों के साथ कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, कहीं कहीं बहुत दूर, बहुत ही दूर। वो तड़पा और तड़प के बेदार हो गया।

और फिर उसके बाद जिस्म अता किया गया, पता नहीं कितनी ही रूहें ऐसी होंगी जिनको जिस्म अता नहीं किया गया, जिनको चुना नहीं गया, तो खुश हो जाया करें। अगर कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी लाहक होती है, किसी उलझन में गिरफ्तार होते हैं, किसी किस्म का कोई लॉस हो जाता है, किसी भी किस्म का हो सकता है, तो परेशान मत हुआ करें, अपनी ज़ात के अंदर झांकने की कोशिश किया करें, समझने की कोशिश किया करें कि इन तमाम बातों का मतलब क्या है, लिंक से लिंक जोड़ने की कोशिश किया करें। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले मेरे पाक परवरदिगार की रहमत के साए तले होंगे, मेरे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। पाकिस्तान का मायारी वक्त 12:22। इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ रहेगा आज शब के 2 बजे तक। आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल रहती हैं बहुत सी बातें, और मेरे नज़दीक हर बात का आगाज एक ख्याल से होता है। ये ख्याल ही तो है जो अल्फाज के ताने बाने को जोड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें जो ख्यालात से होते हुए अल्फाज का रूप धार लेती हैं। ऐसे बहुत से किस्से, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मंजिल तक पहुंचने की जुस्तजू में नामुकम्मल, अधूरी, यौलीदा दामन रह जाती हैं। इनमें आंसुओं की वो कतारें भी शामिल हैं जो मन के कैनवस पे किसी खास का धुंधला शख्स बनाती हैं, मिटाती हैं। हर वो ख्याल जो दर्द की शिद्दत की कैफियत में खुद ही तक पहुंचा देता है, अपने आप से मिलवा देता है, हकीकत का रास्ता दिखला देता है, इस प्रोग्राम में शामिल रहता है। आज के प्रोग्राम में बहुत सी बातें करेंगे हम, लेकिन गला बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा है कि आपसे मिलना होता है, बातें करनी होती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सब अच्छा हो गया है, सब बेहतर हो गया है, सब खूबसूरत हो गया है। उसकी अता समझ कर आता हूं कि उसने अता कर रखा है ये हिस्सा, ये जगह जहां पे हर कोई पहुंच नहीं सकता, कि यहां पर बैठकर वो लाखों करोड़ों लोगों के साथ मुखातिब हो सके, बात कर सके, उनके दिल के अहवाल को समझ सके, उन्हें सुकून देने की कोशिश कर सके। यकीन करें, बात सुनने में बड़ा सुकून है, बात करने में बहुत सुकून है, सारा सुकून ही बात में है। बात को किस हद तक समझा जाता है और बात से दिमाग की पावर को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से समझा जाता है, बात सिर्फ उस समझ की है, बात सिर्फ और सिर्फ उस समझ की है। मैं आपको बता दूं कि सोशल नेटवर्क के ऊपर मैंने पोस्ट थोड़ी सी लेट पोस्ट की है, आप चाहें तो वहां पे जाके हमारी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। और आज आप जानते हैं कि लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाता मैं, आपसे बातें करनी होती हैं, लेकिन अगर आप बात करना चाहें तो एक तरीक़ेकार, बल्कि 2 तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद हैं, और दोनों बहुत आसान हैं। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका पैगाम मैं पढूं, तो सोशल नेटवर्क का नहीं, 4471 पे आपको पैगाम भेजना पड़ेगा। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में, मैसेज ऑप्शन में, क्रिएट ऑप्शन में, जहाँ पर आप मैसेज टाइप करते हैं, वहाँ पर जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम, और उसे भेज दें 4471। हाजिरी लगवाएं अपनी, कौन कौन हैं, कहां कहां से मुझे सुन रहे हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सियालकोट, पेशावर, क्वेटा, बिक्षा, आजाद कश्मीर, क्वेटा, सरगोदा, मुल्तान, जहां जहां तक गुजरांवाला, जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही,
ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے. اس سمے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ڈش پہ ہمیں 70 ملکوں سے زائد جگہوں پر سنا جا رہا ہے. پوری دنیا میں کسی بھی جگہ انٹرنیٹ کے توسط سے ہمیں سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے گا www.radio.gov.pk. اس پروگرام کی سینئر پروڈیوسر ہوا کرتی ہیں خدیجہ مراد صاحبہ. ڈیوٹی آفیسر ہوا کرتے ہیں عدیل. اور ایم سی آر میں مجھے مین معاونت حاصل رہتی ہے عادل بھائی کی. انتہائی خوبصورت شخصیت, بہت محبت والے اور انتہائی عزت والے, احترام والے انسان ہیں. تھینک یو ویری مچ عادل بھائی, آپ کی معاونت درکار رہتی ہے اور مجھے حاصل بھی رہتی ہے. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میری آواز کو آپ سامعین تک, سننے والوں تک بغیر کسی اڑجن کے, بغیر کسی پرابلم کے پہنچاتے ہیں. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. رفاقت علی خان کی خوبصورت آواز, میڈا عشق بھی تو.

0: FM 101, the sound of new millennium.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101, the sound of new millennium.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: FM 101, the sound of new millennium.

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

जी हाँ, एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं तमाम खूबसूरत समातों को, तमाम खूबसूरत आँखों को, तमाम खूबसूरत कानों को। बहुत शुक्रिया। इस समय पूरे पाकिस्तान में सुने जाने वाली आवाज़ का नाम रहमान अनवर है और ये प्रोग्राम है अधूरी बातें। इस प्रोग्राम का मिजाज कदरे धीमा होता है, ठहराव में रहते हुए हम एक दूसरे से बात किया करते हैं, किसी चीज की जल्दी नहीं होती, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती, इसलिए बहुत आराम से ड्राइव किया करते हैं। इस वक्त वो तमाम लोग जो रोड्स पर मौजूद हैं और सड़कों पर गाड़ियां ड्राइव करते हुए ये प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं, तो काइंडली प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक प्लीज आहिस्ता चलाइएगा। और अगर कोई बाई तरफ से या फिर दाई तरफ से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, जल्दी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे जाने दीजिएगा, नजरअंदाज कर दीजिएगा, ठंडा दिमाग रखिएगा, ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली। और सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर किया करें, ये चलान से बचाने के लिए नहीं होती बल्कि आपकी जिंदगी की हिफाजत की एक कोशिश होती है, तो बस वो सोचकर आप सीट बेल्ट जरूर जरूर इस्तेमाल किया करें। बहरहाल कभी कभी किसी अजनबी से बात शुरू करने के लिए भी किसी खास मौजू की जरूरत नहीं होती, बस सामने बैठा हुआ शख्स और दरमियान में चंद लम्हों की ऐसी खामोशी हो जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को जानते तो नहीं मगर अजीब बात है कि एक दूसरे से कुछ कहने का दिल चाह रहा हो। मसलन हो सकता है कि सामने वाला ये कह दे, आज 15 या 16 सितंबर है ना, हाँ 16 सितंबर है, सितंबर का महीना हमेशा कुछ अजीब सा लगता है, ना ये पूरी तरह गर्मी रहने देता है, न सर्दी को अभी आने देता है, दिन में धूप कभी कभी अभी भी अपने होने का एहसास दिलाती है, लेकिन शाम शाम ढलते ढलते आहिस्ता आहिस्ता हवा में बिल्कुल तब्दीली सी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता अपना लहजा बदल रहा हो। मैं बताऊं मैं कैसे बात करूंगा किसी अजनबी से, मैं अगर किसी अजनबी के साथ बैठा हूं तो शायद गुफ्तगू की इब्तिदा जो है वो कुछ इसी तरह से होगी। मैं कहूंगा आज 16 सितंबर है ना, वो शायद मेरी तरफ देखकर कहे जी। मैं मुस्कुराकर कहूं पता नहीं क्यों सितंबर हमेशा बहुत सोचने वाला महीना लगता है। वो शायद पूछे कैसे, और मैं कहूं बस मालूम नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि साल का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका हो, जैसे जनवरी में इंसान के पास बहुत सारे इरादे होते हैं, खून जोश और वलवले के साथ उबाले मार रहा होता है, फरवरी में बहुत सी उम्मीदें, मार्च और अप्रैल में मसरूफियात बढ़ जाती हैं, मई और जून में जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ती है, जुलाई और अगस्त किसी न किसी तरह गुजर जरूर जाते हैं जैसे अभी गुजरे हैं हब्स के महीने है ना, लेकिन फिर अचानक सितंबर आता है और आकर इंसान को याद दिलाता है कि साल वाकई गुजर रहा है,
हो सकता है कि मेरी इस बात को सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराए और फिर मैं पूछ लूं कि आपको सितंबर पसंद है, वो कहे हाँ शायद, मैं कहूँ मुझे भी। फिर शायद कुछ देर की खामोशी हो, वो जैसे ये वाली खामोशी, ऐसी खामोशी जिसे तोड़ने की जरूरत ना हो, और फिर बहुत आम सा सवाल करूं, आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी चीजें जानते हैं लेकिन खुद को कितना कम जानते हैं? वो शायद एक लम्हे के लिए रुके और कहे क्या मतलब? मैं कहूं मतलब ये कि हमें बहुत कुछ मालूम होता है, हमें मालूम होता है कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कैसे बात करते हैं, कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या कहा है किसने क्या किया है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम दूसरों के बारे में राय बनाने में भी बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन जब सवाल अपने बारे में हो, जब मेरी अचानक से खामोशी बढ़ जाए, उसे ऐसा लगे कि जैसे बात अधूरी छोड़ दी है, तो पूछे कि लेकिन अपने बारे में इससे आगे क्या कह रहे हैं आप? मैं कहूं कि क्यों क्यों सवाल पूछना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें मुकम्मल करने की जरूरत नहीं होती, सामने वाला खुद ही समझ जाता है। जैसे मैंने जब ये कहा कि जब सवाल अपने बारे में हो तो बहुत सारे ख्यालात सवालात की सूरत में बनकर ख्याल के कैनवस पे उभरे होंगे, है ना? समझ तो आप गए हैं, है ना? शायद यही वो जगह है, यही वो मुकाम है जहां एक आम सी गुफ्तगू बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी समत चल निकलती है जहां इंसान दूसरों को नहीं खुद को देखना शुरू करता है, जानने की तरफ पहला कदम होता है उसका। जिंदगी के बहुत से ऐसे अदवार होते हैं जिनमें हम आईना देखते हुए गुजार देते हैं, चेहरा देखते हैं, बाल दुरुस्त करते हैं, अपना जेबतन किया हुआ लिबास देखते हैं, अपनी जाहरी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आजकल मेरा भी वैसे यही हाल है। अपने ऊपर मेहनत चल रही है। एक आईना ऐसा भी है जिसके सामने खड़े होने से हम अक्सर घबराते हैं, वो वाला आईना जो हमारे अंदर लगा हुआ है, वो हमें चेहरा नहीं दिखाता, वो हमें हमारी हकीकत दिखाता है, है ना? और इंसान के लिए शायद सबसे मुश्किल तरीन काम यही है कि वो एक दिन खामोशी से अपने सामने बैठे और खुद से पूछे, मैं हकीकत में हूं क्या? हाँ, ना वो जो लोगों को दिखाता हूं, ना वो जो बनने की कोशिश करता हूं, ना वो जो अपने बारे में सोचता हूं, बल्कि बता तो करूं मेरी हकीकत क्या है। सवाल बजाहिर आसान होता है, लेकिन अगर ईमानदारी से इंसान इस सवाल का जवाब तलाश करने बैठ जाए तो शायद उसे अपने अंदर बहुत कुछ ऐसा मिले जिसे वो बरसों से नजरअंदाज करता आया है। अपनी कमजोरियां, अपने खौफ, अपनी गलतियां, अपनी ख्वाहिशें, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह। बाज़ुकात अपने एहतसाब के आईने में अपनी शक्ल उस तरह से वाज़े नहीं होती जिस तरह से दूसरा इंसान दिखा देता है, है ना? तुम्हारी बात कर रहा हूं। बाज़ुकात अपनी अना भी नजर आ जाती है, अपने वो रवैये जिन्हें हम दूसरों में देखते हैं तो उन्हें बुरा कह देते हैं, बुरा करार दे देते हैं, मगर जब वही चीज़ हमारे अंदर मौजूद हो तो उसके लिए कोई
खूबसूरत सा जवाब जस्टिफिकेशन तलाश कर लेते हैं। हम इंसान भी अजीब होते हैं ना, दूसरों की गलतियां हमें फौरन से नजर आ जाती हैं, अपनी गलती के लिए हमें पूरी कहानी चाहिए होती है, दूसरे गुस्सा करें तो हम कहते हैं कि उनमें बर्दाश्त नहीं, हम गुस्सा करें तो कहते हैं कि हमारे हालात ही ऐसे थे, हमारे वाकयात ही ऐसे थे, हमारे मामलात ही ऐसे थे। दूसरा खामोश रहे तो हम उसे मगरूर समझ लेते हैं, गला बहुत खराब है लेकिन फिर भी क्या करूं। कोई अगर खामोश रहे तो हम उसे अनापरस समझ लेते हैं ना, और अचानक अगर कोई खामोश रहे तो कह देते हैं कि हमें सुकून चाहिए था। दूसरा अपनी बात पर कायम रहे तो जिद्दी है, हम अपनी बात पर कायम रहे तो उसूल पसंद है। ये फर्क कहां से आता है, कैसे आता है? मुझे लगता है कि इंसान के अंदर मौजूद वो अना हमें अपने लिए एक अलग मायार बनाकर दे देती है, और शायद खुद शनासी का आगाज अपनी जात की हकीकत को समझने की तरफ पहला कदम इसी जगह से होकर गुजरता है। अपना एहतसाब यहां से ही हम शुरू करते हैं, जहां इंसान अपने लिए बनाए हुए खुसूसी मायार तोड़ देता है, जहां वो पहली मर्तबा अपने आप को रियायत देना बंद कर देता है। अगर तुमने डाइट करनी है तो तुमने करनी ही है। अगर तुम्हारा आज दिल चाह रहा है पिज्जा खाने का, या फिर तुम्हारा ऑयली फूड खाने का दिल चाह रहा है, नहीं खा सकते तुम। अपने आप को समझाना है, रियायत नहीं देनी है अपने आप को, अपने उसकी आवाज नहीं सुननी। समझ रहे हैं ना आप? जहां वो खुद से कहता है हो सकता है मसला हमेशा दूसरों में ना हो। ये जुमला वैसे सुनने में बहुत बहुत मामूली सा लगे, लेकिन इसे अपने बारे में तस्लीम करना आसान नहीं है। बिकॉज नोइंग योर सेल्फ इज नॉट ऑलवेज कंफर्टिंग, समटाइम्स सेल्फ अवेयरनेस हर्ट्स। कभी कभी इंसान को अपनी हकीकत मालूम हो जाए ओह माय गॉड, तो वो अपने बनाए हुए बुत तोड़ दिया करता है, या फिर टूटते हुए महसूस होते हैं उसे। अपनी जात के बारे में जो तसव्वुर उसने बनाया हुआ होता है उससे बाहर आ जाता है। तकलीफ तो है, लेकिन इसके बाद इंसान के अंदर एक अजीब सी नरमी पैदा होती है, वो नरमी जिसे हम एज़ कहते हैं, आजजी। एज़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अपने आप को किसी से कमतर समझने लगे। हाँ, एज़ का मतलब ये भी नहीं है कि इंसान अपनी सलाहियतों से इनकार करते। क्या मतलब है एज़ का? और ना ही ये मतलब है कि इंसान हर शख्स के सामने खुद को झुका दे। ये इससे कहीं आगे की बड़ी खूबसूरत सी चीज है। इंसान अपनी हकीकत को जानने की तरफ कदम बढ़ाता है, जान ले तो फिर एज्स का आगाज हो जाता है। वैसे बहुत से लोग ये कहेंगे कि एज्स और आजजी में क्या फर्क है। वैसे है तो सही फर्क, लफ्ज यूं ही तो नहीं दो बनाए गए। जैसे हमने प्यार मोहब्बत इश्क लव इसके अलग अलग मायार बनाए हुए हैं अपने फहम अपनी सोच और अपनी फरासत की बुनियाद पर, बिल्कुल उसी तरह एज अपनी हकीकत को जान लेने का नाम है। इससे मालूम हो जाता है कि जो भी उसके पास है वो सब कुछ उसकी अपनी बनाई हुई कायनात नहीं है। उसे मालूम हो कि इल्म हासिल किया है मगर इल्म की कोई इंतहा नहीं है कि बस कंप्लीट हो गया, सीख लिया यार मैंने सब कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं है। उसने बहुत कुछ देखा हो सकता है मगर
दुनिया अभी भी उसकी समझ से कहीं बड़ी है, कहीं ज्यादा है। बहुत से फैसले किए हो सकते हैं उसने, मगर हर फैसला दुरुस्त नहीं था। बहुत कुछ सीखा हो सकता है, मगर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो उसे सीखना बाकी है। और शायद सबसे बढ़कर उसे यह मालूम हो जाए कि इंसान जितना अपने आप को जानता है, उतना ही उसे अपनी नादानी का भी एहसास होने लगता है ना। क्योंकि इंसान जब अपनी नादानी का एहसास पाता है तो वो सीखने के काबिल हो जाता है। जब उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है तो वो दूसरों को समझने लगता है। जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, फिर वो दूसरों की गलतियों पर फैसले सुनाना कम कर देता है, बंद कर देता है, छोड़ देता है। सोचने लगता है, मैं कौन होता हूं फैसला सुनाने वाला। अचानक से जब उसे अपनी हकीकत का इदराक होने लगता है तो शायद उसके अंदर से वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है जो हर वक्त खुद को साबित करना चाहती थी, मैं ये, मैं वो। फिर इंसान को हर बहस जीतने की जरूरत नहीं रहती, किसी से आगे निकलने का दिल नहीं चाहता, हार और जीत उसके लिए मायने नहीं रखती, कोशिश उसके लिए बस जरूरी बन जाती है। हर शख्स को गलत साबित करने की जरूरत नहीं रहती, हर जगह अपनी अहमियत बनवाने की जरूरत नहीं रहती। वो सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने अंदर सच्चा रहे। शायद यही वो मुकाम है जहां इंसान पहली मर्तबा खुद से लड़ना छोड़कर खुद को समझना शुरू करता है। बाय द वे, बात लंबी होती जा रही है, बहुत लंबी होती जा रही है ना। एक ट्रैक सुने, हाँ।

आज यार आप मुझसे ऐसा करें, क्योंकि आज मैं आपकी लाइव कॉल शामिल नहीं कर रहा, तो ऐसा करता हूँ कि आपकी जो फरमाइश है, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि इस वक्त मेरा मूड कैसा है, इस मूड के हिसाब से प्लीज़, हाँ इस मूड के हिसाब से कोशिश कीजिएगा अपनी फरमाइश करने के लिए। और मैंने ये बताया आपको कि एक तो तरीक़ेकार ये है कि 4471 पर आपके पैगामात मुझे मौसूल होंगे और मैं फ़ौरन से वो पढ़ता जाऊँगा। आप अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम, और उसे भेज देंगे आप 4471 4471 पूरे पाकिस्तान में अपने मोबाइल फ़ोन से मैसेज टाइप करके आप मुझे यहाँ पर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101lahore, जाकर वहाँ पे लाइक कीजिए, हिट कीजिए और कमेंट एज वेल, क्योंकि कमेंट्स जो है ना वो आज की गुफ्तगू की वजह बनेंगे। आप जितने कमेंट्स करेंगे वो सारे के सारे कमेंट्स मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। सो पोस्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दी है जवाद का, बड़ा खूबसूरत से दो अशआर है। एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, एक ज़ख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए। रब्बे सुखन मुझे तेरी यकताई की कसम, अब कोई सुन के बोलने वाला भी चाहिए। बहरहाल जो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सवाल क्या है, ये चंक निकल गया तो अगला घंटा जो है वो फिर दोबारा से बहुत लंबी गुफ्तगू है। आज जो मन है वो ये चाह रहा है, लेकिन गला बहुत ख़राब है, सोचा था कि ज़्यादा गाने प्ले करूँगा और देखें एक घंटा बीत गया, अभी तक सिर्फ एक ट्रैक प्ले किया मैंने पहला, कलाम में डाइश भी तू। लेकिन चलें अब ज़रा थोड़ा सा गले का ख्याल करते हैं। सवाल ये पूछा है आपसे कि एज क्या है आपकी नज़र में, खुद को कम समझना या खुद को हकीकत में पहचान लेना। यानी जब इंसान को अपनी हकीकत का इदराक होता है तो एजिस क्यों पैदा होता है, क्या वजह है इस एजिस की, आजजी से है ये लफ्ज़, जो बहुत से लोग शायद इस लफ्ज़ एजिस से वाकिफ ना हो। मैंने लफ्ज़ों की ज़रा थोड़ी सी सीरीज स्टार्ट की है, बहुत आम से लफ्ज़ होते हैं लेकिन हम उनके बारे में उनकी असल हकीकत से वाकिफ नहीं होते। सो आज का लफ्ज़ एजिस है, एजिस क्या है आपकी नज़र में, आप इसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से देखते हैं, क्या कभी आजिस हुए हैं, क्या एजिस का मतलब खुद को कमतर समझना है, कम समझना है, हकीर समझना है, या खुद को हकीकत में पहचान लेना है। लेकिन हकीकत में पहचान लेना है इसका ये मतलब नहीं बस आप ये कह दें, कुछ और भी कहें इसके अलावा जो भी आपके जहन में ख्याल आता है कि हकीकत पहचानते कैसे हैं हम अपनी, ठीक है। और फिर इस तरह से कि इंसान को जब अपनी हकीकत का इदराक होता है तो वो अपने अंदर एज्ज पैदा होता हुआ क्यों महसूस करता है, झुकता हुआ क्यों महसूस होता है उसे अपना आप। एक ट्रैक प्ले करते हैं। गले के बारे में क्या कहूँ, बहुत गला ख़राब है, आवाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही है। मुझे सायरा ने कॉल की इस्लामाबाद से पिछले ट्रैक पे, थैंक यू वेरी मच, इस्लामाबाद में आप सुन रही हैं, आपने कहा टॉपिक तो ये टॉपिक आपके सामने, एज्ज क्या है। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पिशावर, क्वेटा, मुल्तान, सरगोदा, गुजरावाला, सियालकोट, चनियोट, झंग, जहां जहां तक आजाद कश्मीर, बेक्शा, जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही है। साथ मेरा नाम रहमान अनवर है, आपसे मुलाकात हुआ करती है हफ्ते में 3 दिन, एवरी ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, मिडनाइट टिल 2 AM, जिसमें से 2 प्रोग्राम इंटरनेशनल प्रोग्राम, एक मैं ये वाला प्रोग्राम ज़िया अंजुम का कंडक्ट कर रहा हूँ। इस महीने में वो लीव पर हैं, उनके लिए कुछ अल्लाह ताला आसानियाँ और मुश्किलात से दूरी पैदा करें, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएं। जो मैं नहीं कह सका, बाकी बुध की रात भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है, पूरी दुनिया में सुना जाता है, और जुमेरात का एक प्रोग्राम जो लोकल प्रोग्राम होता है लाहौर और उसके गिर्द नवा के लोगों के लिए,
So, ladies and gentlemen, सुन रहे हैं आप, बारह बजकर 58 मिनट।

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: जैसे ही आपके मैसेजेस पढ़ने लगा था और अचानक से स्क्रीन जो है वो गायब हो गई, लें दोबारा आ गई। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, यकीन करें कि बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ में बहुत तासीर है भाई, मुझे आपको सुनना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। हमज़ा मुल्तान से। हमज़ा इसलिए अच्छा लग रहा है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहे, लेकिन बात यहाँ से दिल से की जा रही है, ये भी वजह हो सकती है। अब्दुल मोइज़ लाहौर से, मौला आपको सलामत रखे, बहुत अच्छे बात करते हैं आप, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमज़ा ख़ान रावलपिंडी से। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हमज़ा, आप कैसे हो? खैरियत से हो? ठीक हो। लाहौर से उज़्मा एजाज़, अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ रहमान, सलामत रहें, शादो आबाद रहें, आमीन, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, प्लीज़ प्ले दुनिया, किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। अब्दुल नूर हाशमी रिवास गार्डन से हमारे साथ हैं, माय डियर रहमान भाई आदाब। हसन अब्बास की गज़ल प्ले कर दें, आवाज़ मुन्नी बेगम की है, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, बहुत स्लो हो जाएगा, लोग सो जाएंगे, अभी सुलाना नहीं है, वैसे तो मेरी आवाज़ सुन के भी सो जाते हैं अक्सर लोग, सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, ये कह रहा हूँ, सुकून मिलता है इसलिए सोते हैं। बाय द वे सतार मलिक, या सतार मलिक रिजवान आवान फ्रॉम चन्योट, मेरी मेरी पिंडी में फर्स्ट टाइम जॉब है और आज फर्स्ट टाइम शो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली हैं, थैंक्स। अच्छा, कितनी खूबसूरत बात की अभी इसने, अभी रिजवान आवान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, कह रहा है कि थैंक्स, बड़ी बातें, बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं, उसके लिए उसने शुक्रिया अदा किया है। क्या लोग ऐसा कर देते हैं आज के दौर में कि कोई अच्छी चीज़ सुनने को मिले तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए 8 रुपये खर्च करते हैं, बहुत बड़ी बात है। मुझे रिजवान तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। मुश्ताक खान नियाजी मियांवाली से हमारे साथ हैं, 25 DB। भाई मैं लाहौर में हूँ, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है भाई, रिक्वेस्ट है अगर पूरी कर दें तो बहुत खुशी होगी, गज़ल कल शब जो वो मैं था, मैं कोशिश करता हूँ। सैयदा निमरा लाहौर से हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। एज़ खुद की हकीकत को जानना है, जो मिट्टी थी मिट्टी है और मिट्टी ही होगी, ये पहली लड़की है जिसने मुझे इस टॉपिक के हवाले से बात की है। निमरा कीप इट अप, वेरी वेरी गुड। माया हमारे साथ हैं, भाई अगर आप अचानक किसी को देखें और वो आपको देख रहा हो और ये सिलसिला बार बार रिपीट हो तो इसको कैसे समझना चाहिए या क्यों होता है ऐसा? बाज़ोकात आई कॉन्टैक्ट करने की कोई कोशिश करता है, अगर आप डिसकनेक्ट कर देते हैं तो बात ख़त्म हो जाती है, बार बार आप उसको कनेक्शन वापस फराहम करते हैं तो फिर वो आगे बढ़ जाती है। आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं। वो आई कॉन्टैक्ट अच्छा लग रहा है, उससे पॉजिटिव वाइब मिल रही है, अगर अनकम्फर्टेबल हो रहा है तो जाके उससे कहा जा सकता है कि क्या देख रहे हैं आप, क्यों देख रहे हैं आप, या फिर अगर कुछ कहना नहीं है तो कुछ कहे बगैर बस खामोशी के साथ हटा जा सकता है वहाँ से, यानी नज़रें फेर लेना, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, जिसमें आपके सवाल का जवाब भी दूसरे को मिल जाता है या दूसरे के सवाल का जवाब, जो आंखों से आई कांटेक्ट करने के बाद कोशिश कर रहा होता है जांचने की या फिर सवाल के जवाब की कि क्या मैं आगे परसू करूँ, क्या मैं आगे इन आँखों को और आगे बढ़ाऊँ, आँखों से बातें और ज़्यादा गहरी करूँ, ये आप पर डिपेंड करता है। 4-4-7-1 पे सबसे पहले पैगामात आपने मुझ तक पहुंचाए, बहुत बहुत शुक्रिया। 11 मैसेजेस हो चुके, अगर आप चाहें आपके मैसेजेस पहले मैं रीड आउट करूं तो फौरन से मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम अपना पैगाम और उसे भेज दें। अच्छा 15 रुपए का हो गया मैसेज ये लिखा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जो लोग मैसेज करते हैं और अपने होने का हमें एहसास दिलाते हैं, प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101 लाहौर, आप चाहे तो वहां पे अपने होने का हमें एहसास दिला सकते हैं और वहां पे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के अंदर सवाल का जवाब या अपने मन की कोई भी खूबसूरत सी बात लिखकर भेज सकते हैं और मैं उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। 1:15 दर्द करने लगा गला। अली की खूबसूरत आवाज सुनते हैं, इसके बाद वापस आते हैं।
1: कभी जो मैं इश्क लिखूं तेरी तस्वीर बने हंस के मैं।
0: अली रजा एंड शजर,
1: जो तू मेरी,
0: बहुत खूबसूरत ट्रैक।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101, the sound of new millennium. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

facebook.com/fm101 लाहौर का ऑफिशियल फैन पेज, उससे पहले मेरी आईडी है facebook.com/IamRahmanAnwar। फेसबुक सर्च बार में जाकर सिर्फ इतना टाइप करेंगे रहमान अनवर तो मैं मिल जाऊंगा, या फिर गूगल में जाके आप आरजे रहमान अनवर लिखेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। मरीना बिलाल हमारे साथ हैं, गहरी उम्र सुन रहा है आपको और उसका फेवरेट ट्रैक प्ले कर दें, कोशिश करते हैं। वेलकम आपने कहा मरीना, बहुत शुक्रिया। मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी ऑसम कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। उस्मा एजाज हमारे साथ मौजूद, थैंक यू वेरी मच उस्मा, खुश रहें। डॉक्टर आबिया मुझे ये कह रही हैं कि एक बार शेर दोबारा पढ़ दें। एक जख्म चाहिए, एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए। रब्बे सुखन मुझे तेरी यकताई की कसम, अब कोई सुन के बोलने वाला भी चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है। facebook.com/fm101 लाहौर का ऑफिशियल फैन पेज, और 4471 के जो पैगाम आते रहेंगे वो हम पढ़ते रहेंगे। 1:25 इसके कुछ मैसेजेस पढ़ते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू की जाने वापस लौट कर आते हैं। साथ साथ आपको रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इतनी मोहब्बत से कमेंट्स कर रहे होते हैं। अली हैदर जुनेजो हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान, वेलकम टू द शो, नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इलियास खान वजीर हमारे साथ हैं, बिलोंग टू वजीरिस्तान, लिसनिंग योर प्रोग्राम टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, रियली वेरी ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच इलियास, खुश रहो आबाद रहो। किंजा उस्मान हमारे साथ हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कराची। किंजा आपको खुश आमदीद कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। कराची कैसा है, ठीक है ना, कराची में सब कैसे हैं। उमर भट्ट हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम UAE। रहमान भाई आप कैसे हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है। एड्स, मेरे ख्याल से एड्स झुक जाने का और अना मिटा देने का नाम है, रुजू कर लेने का नाम है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि बात कर लेना चाहिए, बात कर लेना एक। बात कर लेना एक दरमान है, दवा है, मामलात का सुलझाव होता है बात कर लेने में। बात कर लेना भी आजजी है, इज्ज़ है, बात सही कह रहे हैं आप। आपकी बातों से बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है आपको सुनना, हमेशा हमेशा से ही अच्छा लगता है। खुश रहें आप हमेशा, सब सुनने वालों के लिए बहुत प्यार और दुआएं। उमर भट्ट इतना लंबा मैसेज लिख देते हो तो दिल बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि कोई टाइप करता है, कोई सुनकर अपने एहसासात तहरीर करता है और फिर उसको रवाना करता है मेरी तरफ। ये मोहब्बत होती है जो मुझ तक पहुंचती है और बहुत बहुत खूबसूरत एहसास मिलता है। उमर आया करो हमेशा, ठीक है ना। हिरा फातिमा हमारे साथ हैं, सर ज़िया भाई की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उसे सेहत दे, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करनी आपने, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दुआ करनी है। जद्दा से सुन रहा हूं मैं, और मिसेज बाहर निकले हैं ड्राइव के साथ साथ, आपकी खूबसूरत आवाज बहुत हसीन इम्तिजाज है। आज जद्दा में एक टेंस दिन था, सारा दिन अलर्ट्स आती रहीं, आज जद्दा बहुत सहमा हुआ है, अल्लाह पाक सब मुसलमानों के लिए आसानियां फरमाए, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज रहमान भाई, अल्लाह ताला बहुत आसानियां पैदा करे, बहुत आसानियां पैदा करे, और हर किस्म की बुरी आफत से जद्दा को, हर मुसलमान को, हर इंसान को, खा किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता है, उसे बचाए, इंसानियत का तकाजा यही है।
बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, आपने मैसेज किया अपनी वाइफ के साथ आप निकले होते हैं और मुझे सुन रहे होते हैं। कैसे कर लेते हैं आप, ये तो बड़ी बर्दाश्त का काम है ना। लेकिन चले उस्मान, बहुत शुक्रिया, और भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मरीना हमारे साथ हैं, 16 सितंबर 2026 वेंसडे 12:39 AM। अच्छा ये, हाँ इस टाइम से सुनना शुरू किया तुमने मुझे। किंजा उस्मान हमारे साथ, अल्लाह की तौफीक है जो आप बात करते हैं, बात सही कह रही हैं आप, उसकी इजाज़त है तो बात तभी करता हूँ किंजा, थैंक यू वेरी मच। एस एच जीशान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जीशान हैदर फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। हेरा फातिमा कह रही हैं आपका गला ख़राब है, हाँ जी बहुत बहुत बहुत ज़्यादा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोगों की दुआएँ हैं, वरना नामुमकिन सा लग रहा है। एस एच जीशान जी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। आर के मुग़ल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मैं सरगोदा से आपको सुन रही हूँ। ज़िया भैया क्यों नहीं आ रहे, मैं ज़िया भाई को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरी जानिब से ज़िया भाई जान को ये सॉन्ग डेडिकेट कर दें, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, कोशिश करता हूँ मैं इंशाल्लाह। ज़िया नेक्स्ट मंथ से आपके साथ होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यस। अस्सलाम वालेकुम, आपको पहली बार सुना तो आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा, सोचा सलाम किए बग़ैर गुजरना मुनासिब नहीं, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी, खुश रहिए और यूं ही मुस्कुराती रहिए। अच्छा ठीक है, साइम तबस्सुम ने उसे रिप्लाई किया, ठीक है, वाह क्या कहने। उस्मान एजाज हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम अर्ज रहमान, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। किंजा उस्मान कह रही हैं, किंजा फ्रॉम पार्क कॉलोनी कराची, ठीक है। जुगनू जूनियर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। अनिला आपी, हमीद गुल साहब, फरी आपी, रजा चौधरी, सज्जाद अली लाडला, मारिया शहजादी, मोहम्मद शहजाद, वड्डा तारक भाई, निका तारक भाई, शमीम आपी, अब्दुल हमीद, बर्फ़ी वाले, लियाकत भाई, बोदी जट, नज़ीर खोसो, फरजाना आप, या पता नहीं आप ही लिखा होगा आपने, रिमशा लाहौर से, उस्मान मुग़ल, अमारा बेग, हनीफ ड्राइवर आपने लिखा, और सलीम दर्जी लिखा आपने, और तमाम खूबसूरत समातों की खिदमत में मोहम्मद इकबाल मुग़ल का आजाना सलाम, हाँ देखा एज़ यहाँ से ज़ाहिर होता है, आजाना सलाम पेश है, कबूल फरमाए मोहम्मद इकबाल मुग़ल। जुगनू जूनियर अंदरून लाहौरी, ये भूल गया होगा इसका नाम ना, अभी अभी इसने एंड पे शामिल किया जुगनू जूनियर, अच्छा क्या फिर अपना नाम शामिल किया, जुगनू जूनियर अंदरून लोहारी गेट। साजिद अली तालियां बजा रहे हैं मेरे लिए, बहुत शुक्रिया, योर एफर्ट नेवर लेट यू डाउन, योर एफर्ट्स नेवर लेट यू डाउन, सही कह रही है मरीना। एक गाना प्ले करें थोड़ा सा यार गला, प्लीज समझा करें बात को, 1:32 वापस आता हूँ फिर वो कुछ बातें करते हैं एड्स के ऊपर, मैं जरा उसे सुन लूं।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101। एफएम 101 द साउंड ऑफ न्यू मिलेनियम।

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

एड्स क्या है? इंसान को जब हकीकत का इदराक होने लगता है तो वो झुकना क्यों शुरू कर देता है? ये आपसे मैंने आज सवाल पूछा है। हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि आखिर इंसान खुद को पहचाने कैसे, खुद की हकीकत को समझे कैसे। सवाल बहुत अजीब है ना। बात अगर किसी दूसरे शख्स को जानने के लिए हो तो हम उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके रवैये देखते हैं, उसके फैसलों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुद को जानने के लिए हम क्या करते हैं? शायद ज़्यादा कुछ नहीं। हम अपने साथ रहते तो हर वक्त हैं मगर अपने आप को देखते बहुत कम हैं, सुनते बहुत कम हैं, बात बहुत कम करते हैं। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है, यकीन करें। सारी जिंदगी हम अपने साथ गुजार देते हैं लेकिन rarely sit down and truly meet ourselves। बहुत बहुत मुश्किल है। अपने दिन का हिसाब रखते हैं, रवैयों का हिसाब नहीं रखते। हम ये याद रखते हैं कि आज किसने हमें क्या कहा है, ये याद नहीं रखते कि आज हमने किसी के साथ क्या किया है। दूसरों के अल्फाज तो हमें याद रह जाते हैं, अपने लहजे भूल जाते हैं। दूसरों की बेरुखी, बेएतनाई, बेमुरव्वती महसूस होती है। अपनी बेरुखी, बेमुरव्वती, बेएतनाई नज़र ही नहीं आती। अपने आप को जानने का पहला कदम यही है कि इंसान अपने अंदर एक ऐसे शख्स को देखना शुरू करे जिससे वो अब तक नजरें चुराता रहा है। कभी तन्हाई में बैठकर अपने आप से पूछे, मैं कब गुस्सा करता हूं, क्यों करता हूं, किस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है मुझे, मैं किस बात पर फौरन आग भगूला हो जाता हूं, किस बात पे पीछे हट जाता हूं, किस बात से भाग जाता हूं, मुझे किस चीज के छिन जाने का जो खौफ है सबसे ज्यादा लाहक है। मैं दूसरों से क्या चाहता हूं और क्या मैं खुद दूसरों को वही चीज दे पाता हूं जिसकी तवक्को उनसे करता हूं। बहरहाल ये सवालात इंसान के दिमाग में आते जरूर हैं। थोड़ा सा गहराई से और इन्हें देखें तो ये पूरे वजूद से मुताल्लिक सवालात बन जाते हैं। इंसान सिर्फ वो नहीं है दोस्तों जो दूसरों को नजर आता है। दूसरों के सामने वाजे होता है, जाहिरी तौर पर वो नहीं है। इंसान वो भी है जो अकेले में होता है अपने आप के साथ, वो ख्यालात जो वो किसी को नहीं बताता, वो खौफ जिन्हें वो मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेता है, वो कमजोरियां, वो कमतरियां जिन्हें वो दुनिया से नहीं खुद से भी छुपाता है, कुछ गलतियां जिन्हें याद करते हुए आज भी दिल के अंदर एक छोटी सी शर्मिंदगी जाग उठती है उसके। हो सकता है यहीं से असल सफर की शुरुआत हो। यकीनन यहीं से असल सफर की शुरुआत होगी, क्योंकि इंसान जब अपनी हकीकत को देखने की हिम्मत करता है तो पहले उसे अपनी खूबियां नहीं मिलती, अक्सर उसे अपनी खामियां नजर आती हैं। ये लम्हा बहुत अहम होता है। कुछ लोग रुक जाते हैं, अपने आप से मायूस हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं बदला जाएगा, मेरी शख्सियत ऐसी ही है। लेकिन अपने आप को जानने का मकसद खुद को बुरा कहना नहीं है। एग्जैक्टली सच कह रहा हूं मैं। सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट सेल्फ हेटेड। अपने आप को जानना अपने आप से नफरत करना नहीं है, बल्कि खुद को इतनी ईमानदारी से देखना है कि जहां गलती हो वहां गलती कह सकें, जहां कमजोरी हो कमजोरी तस्लीम कर सकें, जहां बेहतरी हो या उसकी ज़रूरत हो वहां अपने आप को बेहतर बनाने की
बेहतर होने की कोशिश करें, मौका दें अपने आप को। शायद इंसान की असल पुख्तगी यही है कि वो अपने बारे में सच सुन सके, दूसरों से नहीं खुद से। क्योंकि दुनिया की तरफ से मिलने वाली तनकीद तो कभी कभी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने अंदर से आने वाली सच्ची आवाज़ से भागना शुरू कर देता है, मुश्किल हो जाता है। कभी कभी किसी दूसरे के खौफ की वजह से भी हम ऐसा कर लेते हैं। यकीन करें, अपनी आवाज़ से भाग जाते हैं हम। वो आवाज़ बहुत खामोश होती है, कोई शोर नहीं करती। बस कभी रात के आखिरी पहर में अचानक याद आ जाती है, कभी किसी ख्वाब की सूरत में उतर आती है, कभी किसी खामोश सड़क पर चलते हुए, किसी पुरानी तस्वीर को देखते हुए, किसी शख्स के साथ किए हुए अपने रवैये को याद करते हुए दिल के अंदर से एक जुमला निकलता है, शायद यहाँ मैं गलत था। बस ये शायद मैं गलत था बहुत बड़ी बात, यकीन करें ये जुमला बहुत बड़ा है। क्योंकि अना हमेशा कहती है तुम ठीक थे, वो गलत है, और एज बहुत आहिस्ता से कहता है हो सकता है तुम गलत हो सकता है तुम भी गलत हो सकते हो ना। दोनों आवाज़ें इंसान के अंदर हमेशा मौजूद रहती हैं, एक खुद को बड़ा साबित करना चाहती है, दूसरी हकीकत को कबूल करना चाहती है। एक कहती है मुझे सब मालूम है, दूसरी कहती है मुझे कुछ भी मालूम नहीं। एक कहती है मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, दूसरी कहती है जो मिला है वो भी हमेशा मेरे इख्तियार में नहीं रहेगा, या वो मेरे इख्तियार में नहीं था, उसकी अता है, उसका शुक्र है। एक कहती है मैं दूसरों से बेहतर हूं, दूसरी आवाज कहती है मैं नहीं जानता कि दूसरे शख्स किन हालात से गुजर कर यहां पहुंचे हैं, बहुत मुश्किलात के साथ गुजरे हो सकते हैं। एड्स इसी दूसरी आवाज का नाम है, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। एड्स और कमतरी एक चीज नहीं, इन चीजों के अंदर कुछ चीजें कि अपनी जात के अंदर से कि मैं कमतर हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। इन Superiority says I'm less. Humility says I don't need to be more than any everyone else. कितनी खूबसूरत बात है ना, आजजी इंसान को छूना और एहसास करवाना सिखाती है अपनी ज़ात के उस हिस्से को जिसको उसने कभी छुआ ही नहीं, पहचाना ही नहीं, अपने हुजम का बेहतरीन तरीके से दुरुस्त अंदाज़ा करवाती है। जैसे समुंदर, वो शोर भी कर सकता है, मौजे भी उठा सकता है, किनारों से टकरा भी सकता है, मगर फिर भी वो जानता है उसकी गहराई उसकी आवाज से कहीं ज्यादा है। इस तरह एक बाइल्म इंसान जरूरी नहीं कि हर गुफ्तगू में अपनी काबिलियत साबित करे, जरूरी नहीं होता कि हमेशा वही जीत कर सामने आए, है ना। समटाइम्स दी wisest person in the room is the one who knows when to remain silent. خاموشی کس وقت ضروری ہے، کیونکہ علم اگر انسان کو نرم نہ کرے تو وہ صرف معلومات تک رہ جاتا ہے۔ حقیقی علم انسان کے اندر ایک عجیب سی خاموشی پیدا کرتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ دنیا اس کے علم سے بہت بڑی ہے۔ وہ جتنا پڑھتا ہے اتنا محسوس کرتا ہے، اتنا محسوس کرتا ہے तो फिर बहुत कुछ उसकी समझ में आने लगता है। उसे लगने लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है। जितना देखता है उतना समझता है। हर इंसान एक अलग दास्तान रखता है, यकीन करें। बहरहाल 1:51 बातें खत्म नहीं होंगी, बहुत बहुत लंबी बातें हैं। मैं बहुत एक एक स्पेसिफिक सोच को सोचते हुए चीजों को लेकर आगे चल रहा हूं, लेकिन इसके लिए ये जो 2 घंटे का प्रोग्राम होता है ये बहुत कम होता है। इसमें
कैसे तय किया जा सकता है सब कुछ, कैसे कहा जा सकता है ना सब कुछ। एक ट्रैक केली क्लार्कसन को सुनते हैं, बहुत जबरदस्त ट्रैक है ये वाला। यू वुड लव दिस ब्यूटीफुल रैकेट। यार सुन लेना, कोई मसला नहीं, बहुत मजे का है, सुन लेना, मेरी खातिर सुन लो, दोबारा से सुन लो, मुझे पसंद है यार। ब्यूटीफुल डिजास्टर।

Beautiful disaster. Ladies and gentlemen, once again, welcome back. एक track साथ ही साथ play करेंगे और उस पर आपके final messages जो हैं वो read out करेंगे. अल्फाज play कर रहा हूँ. हमजा मलिक और जैन जोहेब की खूबसूरत आवाज़. फाहद हमारे साथ हैं माही, थैंक यू वेरी मच. फाजिल शेख हमारे साथ हैदराबाद से, अभी पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने लाइक किया स्टेटस, दिल भेजा मुझे. जिल्ले शाह मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया. वकास थैंक यू वेरी मच. असमा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. मियां जाहिद बहुत बहुत शुक्रिया. सलामत रहे. मुबशर सईद भाई थैंक यू वेरी मच. हमजा नवाब हमजा थैंक यू वेरी मच. मान भाई थैंक यू वेरी मच. फरहान थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो. परवीन आसिफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल की उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. साजिदा ने मुझे कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.

फातिमा कह रही है आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन ज़िया भाई को भी मिस कर रही हूँ, आप मेरे लिए उन्हें बताएं कि ओके, बहुत सारी दुआएं कर रही हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपका गला ख़राब है, आप गोली खाएं ठीक हो जाएगा। सैयद अदील इकबाल शाह इस्लामाबाद पुलिस से, मेरा प्यारा भाई हमेशा मेरे साथ होता है, इस्लामाबाद पुलिस से मुझे सुन रहा होता है। सैयद अदील थैंक यू वेरी मच, खुश रहें आप बात करें। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से हमारे साथ, ठीक है। सलमा राशिद साहिबा डीएचए लाहौर से, रहमान प्लीज म्यूजिक प्ले करें साथ, थैंक यू वेरी मच, ठीक है मैडम। इसके साथ साथ कुछ और पैगामात हैं वो भी शामिल करते हैं।

एक बजकर 57 मिनट टाइम जो है इजाजत लेने का आन पहुंचा, 3 मिनट बाकी रह गए। बिस्मा हमारे साथ थी लाहौर से, थैंक यू वेरी मच। आर के मुगल कह रहे हैं सर प्लीज मेरी फरमाइश है, कौन सी फरमाइश मुझे बता दो, याद नहीं रहा मुझे। जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच। हो सके तो मेरा एक काम करो, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन वादा नहीं। जफर इकबाल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, दुबई से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। अली हैदर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। साइम तबस्सुम हमारे साथ हैं, भाई रहमान आजिज जो अपने आप को बड़ा ना समझे, गुरूर ना करे और दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आए, वो बहुत आजिज इंसान है। एज इंसान के अंदर मौजूद आजिज़ी, नरमी और इनकसारी उसकी बातों और अंदाज में एज है। बस एक बात हमेशा याद रखें, आजिज इंसान एज उस इंसान की आजिज़ी, और यही आजिज़ी इंसान को दूसरों के दिल के करीब कर देती है। ठीक है, उनकी तरफ से तरक मुलाकात हो गई, हम जिससे डर रहे थे वही बात हो गई, आईना देखने में नई बात हो गई, उनसे ही आज उनकी मुलाकात हो गई, तय उनसे रोजे हशर मुलाकात हो गई। इतनी सी बात कितनी बड़ी बात हो गई, कम ज़र्फ़ी हयात से तंग आ गया था मैं, अच्छा हुआ कज़ा से मुलाकात हो गई। दिन में भटक रहे हैं जो मंजिल की राह से, ये लोग क्या करेंगे अगर रात हो गई। आए हैं वो मरीज़ मोहब्बत को देखकर आंसू बता रहे हैं, कोई बात हो गई, था और कौन पूछने वाला मरीज का, तुम आ गए तो उर्सशे हालात हो गई। ऐ बुलबुले बहार चमन अपनी खैर मांग, सयाद व बागबा में मुलाकात हो गई, जब जुल्फ याद आ गई यूं अश्क बह गए, जैसे अंधेरी रात में बरसात हो गई। अच्छा भेजा आर के मुगल, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें आबाद रहें। किंजा उस्मान कह रही हैं एड्स एहसास है। किंजा उस्मान का एक और मैसेज, अल्लाह का शुक्र है कराची बहुत अच्छा है। ठीक है, डॉक्टर अलीना मेरे साथ हैं, कह रही हैं कि गाने प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आप बात कर रहे हैं उसका मज़ा आ रहा है। जब आपका गला थक जाया करे तो गाना प्ले कर दिया करें, वरना ना प्ले किया करें, आपकी बातें सुनने का बहुत मज़ा आता है, आपकी आवाज़ सहर तारी करती है और दिल खुश हो जाता है। गाने हम कहीं पर भी सुन सकते हैं। ठीक है, ठीक है।

डॉक्टर सुमायरा कह रही हैं यहाँ पे आके गाने सुनने हैं तो फिर गाने तो हम YouTube से सुन लेते हैं, यहाँ पे तुम्हें सुनने के लिए आए हैं रहमान। सो ठीक बात कर रहे हो, मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, बशीर सईद साहब हमारे साथ हैं, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें। मुल्तान के बड़े खूबसूरत लबो लहजे के शायर सैयद जैन बुखारी, बहुत शुक्रिया। आरजे मसूद अहमद साहब 101 की बड़ी खूबसूरत आवाज हैं, थैंक यू वेरी मच। आमिर लियाकत, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अली, बहुत शुक्रिया। सारा आवान, बहुत शुक्रिया। अजीम जट, थैंक यू वेरी मच। सबा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अली, बहुत बहुत शुक्रिया। फराज, थैंक यू वेरी मच। सजावल बेटा, एहसान, थैंक यू वेरी मच। आतिफ सईद साहब इस्लामाबाद से, मेरे बहुत प्यारे भाई, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें। टाइम आपसे इजाज़त लेने का आन पहुंचा। आयशा मुझे सुन रही हैं, एहसान बहुत बहुत शुक्रिया। शाद यूसुफ मेरा प्यारा भाई, अली रजा, थैंक यू वेरी मच। अली हुसैन, थैंक यू वेरी मच। एहसन आफरीदी, थैंक यू वेरी मच। उबैदा हमारे साथ हैं, मलिक जुनेद DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद से, थैंक यू वेरी मच। शहबाज राजपूत, थैंक यू वेरी मच शहबाज भाई। मनोन लाहौर की प्रोड्यूसर हैं मिस किंजा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हुमा काशिफ फेलो आरजे हैं, आरजे हुमा काशिफ कराची से ताल्लुक, बहुत प्यारी आवाज़, थैंक यू वेरी मच हुमा, खुश रहें। आरजे निमरा मसूद साहिबा 101 की खूबसूरत आवाज़ हैं, थैंक यू वेरी मच। नदीम रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ अब्बासी, आरजे अरहम भट, थैंक यू वेरी मच। सल्फिया, थैंक यू वेरी मच। रजा, बहुत बहुत शुक्रिया। उजैर अली, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ नाम शामिल करूंगा, टाइम जो है ना वो बहुत कम रह गया।

अच्छा ठीक है, इतना दिल पे नहीं लेते किसी बात को। मलिक वसीम अवान थैंक यू वेरी मच, मोहम्मद सुलेमान, हिना अहमद हमें सुन रही बहुत बहुत शुक्रिया, मोहित जावेद थैंक यू वेरी मच, ताहिरा मसूद साहिबा वन वन की बहुत खूबसूरत आवाज़ है, आरजे सादिया रफीक थैंक यू वेरी मच, आप सुन रही हैं, नौशीन रशीद मुझे पेशावर से सुन रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ ट्रैक दोबारा सही है, अच्छा लग रहा है यार, मजे का ट्रैक है, इसको प्ले करते हैं। आए है। इसको दोबारा से इसको प्ले करते हैं, ठीक है जहन का ये वाला भी प्ले कर लेते हैं। कलाला हमारे साथ हैं, अलमुद्दुल अशराफ, उस्मा इजाज़ जट थैंक यू वेरी मच, अमीन शालबट थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।

जब तू आएगी, जब तू आएगी। 101 FM

और वही तो है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। ये बातें उस शख्स के लिए जो गौर करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे सोचने और समझने की हैं।